सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. What a beautiful song from Zindagi Na Milegi Dobara. आपको लग रहा होगा ना कि ओ ये गाना इस मूवी से है। कभी कभी ऐसा ही होता है, नई लिरिक्स जो है आजकल गानों के इतने ज्यादा याद नहीं होते हैं क्योंकि हम शायद लिरिक्स को महसूस ही नहीं करते हैं इतना। नहीं, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पहुंच चुके हैं 8 बजे के उस पार और मैं हूं अंतरा आपके साथ ऑन मस्ती का मंत्रा। ब्यूटिफुल लाइन्स अभी लास्ट में वो गा रहा था एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड कितना अच्छा लिखा है कि है कोई जो ये मुझसे कह गया ये कहां तू रह गया, जिंदगी तो है जैसे कारवां तू है तन्हा कब यहां, सभी तो है यहां। Well, anyways, there was a time I used to like go gaga over lyrics and you know, अक्सर जब महफिले ऐसे बैठे बैठे जाते थे then I used to be like, you know, that gana and those lyrics, oh my god, it's so beautiful. But anyways, coming back, it's just so nice. भाई कान फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं क्योंकि हर कोई इसकी बात कर रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्यूटिफुल डिजाइनर एंड द नॉट वेरी ब्यूटिफुल डिजाइनर एंड द वियर्ड डिजाइनर ड्रेसेस, इसके बारे में सभी बात कर रहे हैं। बट वॉट आई सॉ रिसेंटली वॉज दिस वन मैन, इनफैक्ट नॉट वन मैन, वो उनकी बीवी एंड देयर वर अदर रिप्रेजेंटेटिव्स एज वेल एंड आई फेल्ट सो प्राउड एज एन इंडियन। ओके, एंड व्हाई दिस मैन, बिकॉज हमने इनको इतना देखा हुआ है। दिस आई नो आई एम साउंडिंग सो 90s, बिकॉज अगर आपने हम पांच देखा हुआ है तो हम पांच के वो जो डैडी है यानी कि अशोक सराफ जी की मैं बात कर रही हूँ, we cannot forget him, right? We all remember him. He was just too good. He made that space in our hearts. But he has done a lot of other work as well. Hum unko popularly usme. So at 78, jab Ashok Saraf ji ko maine dekha, walking that Kankar red carpet, holding Nivedita Saraf, apni biwi ka haathon mein haath dalkar, it just didn't feel like a proud moment. But like, mujhe laga ki bhai, ये है इंडियन सिनेमा। इट रियली रियली फेल्ट पर्सनल वहां पे। ही हैज हैड अ लेजेंडरी करियर, ठीक है, 65 इयर्स, 250 प्लस मराठी फिल्म्स की हुई है, ओवर 40 बॉलीवुड मूवीज की है। आई थिंक अशोक सराफ जी जो है, ही हैज गिवन इंडियन सिनेमा ऑल्सो सम ऑफ इट्स मोस्ट अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स, जैसे कि भाई करण अर्जुन के मुंशी जी टू हमारे हम पांच के आनंद माथुर, ही हैज बीन टू गुड। एंड व्हेन आई सॉ देम इन दिस ट्रेडिशनल महाराष्ट्र नटाया बंद कला एंड द लेडीज लुकिंग एब्सोल्यूटली गॉर्जियस इन दोज अटायर, ओ माई गॉड, कान फिल्म फेस्टिवल जस्ट फेल्ट absolutely unreal, surreal, let's be honest. Yep, yeah, so aisa beech beech mein hote rehna chahiye, ye moments jo hai humko bilkul jeena bhi chahiye, proud bhi feel karna chahiye. Radio Masti 24/7 live par isi baat pe, let's do some dhagala lagle gala, banta hai bro, banta hai. Good morning.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
3: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
4: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
5: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
6: Good morning!
7: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंतरा।
8: That is right, Archer Academy खुलने वाला है वापस से, and yes, it's only and only for you. Radio Masti 24/7 live. 8:19, मैं हूँ अंतरा आपके साथ, चल रहा है यहाँ पे मस्ती का मंत्र Archer Academy. Yes, already जो है जब हमारा first match यहाँ पे तैयार हुआ था, it was such an amazing experience to see people, because क्या होता है ना कि जब यहाँ पर कोई भी आता है और जब हमें कोई ऐसा बोलता है कि हाँ हाँ बात ही तो करते हो, लाइक कौन सी बड़ी बात होगी, बात तो कोई भी कर सकता है ना। आई नो अ लॉट ऑफ एक्सट्रोवर्ट्स, यू नो हाल ही में मैं किसी से मिली जिसने मेरे को ये बोला हुआ था कि यार ये तो मैं भी बड़ी आसानी से कर लेता हूँ, महफिल जुमाना, यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैंने कहा कि वेरी गुड, जब ऐसे ही इंसानों को बैठा दिया जाता है माइक के सामने तो फिर उनको समझ में आता है कि जब वो माइक ऑन होता है एंड व्हेन यू नो दैट यू नो इतने सारे लोग आपको सुन रहे हैं एंड देयर इज अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच कम्स व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन दैट माइक, यस That makes a huge difference. And not only that, I think आजकल बात करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा communication सीखना करना, stage पे खड़े होकर confidently अपने आप को present करना, this all comes with learning. And वही learning देने के लिए आज academy आप सभी के लिए वापस से open हो चुका है. That is right. भाई एक hybrid model लेकर इस बार आए हैं. हर level जो है वो आपका ऑनलाइन एज वेल एज इन स्टूडियो एक्सपीरियंस के साथ बिल्कुल किया जाएगा. बिगनर है, देन बिगनर टू आप एडवांस लेवल पर पहुंचते हैं धीरे धीरे करके. काफी इंडिविजुअल फोकस्ड सिलेबस है एंड 14 साल से अबव सभी के लिए आज अकेडमी बाय मस्ती मीडिया नेटवर्क बिल्कुल ओपन कर दिया गया है. सबसे खूबसूरत बात क्या है कि अगर आप काफी मेहनत कर जाते हो और यू नो यू बिकम रियली रियली गुड, यू गेट ऑल दी दोस ट्रेन्ड वॉइसेस गेट दिस मौका टू होस्ट लाइव शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7. इट इज बिग, इट इज अ ह्यूज थिंग टू कम हियर एंड हैव योर ओन शो एंड you know expressing yourself the way you want. kya jo khushi milti hai na at the end of every single time till date, itne saal ho gaye shows karte hue, main bata nahi sakti kitna kya feel hota hai. it's just some other level altogether. so what you have to do is you have to email your brief intro to us info@radiomasti.com.sg par requesting for an application form for RJ Academy and बिल्कुल उसको भर के हमें वापस भेजिए एंड देन द नेक्स्ट सेट ऑफ स्टेप्स जो है बिल्कुल आपको बता दिए जाएंगे. बट जब इस तरह के मौके जिंदगी में आए दोस्तों तो बिल्कुल उसको ले लें.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में
3: रहो। राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
5: The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ।
7: बाजू
8: ट्रैफिक अपडेट
9: 8:31 माय स्टूडियो क्लॉक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आइए आपको बताया जाए इस घंटे का ट्रैफिक का अपडेट। एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन TPE टुवर्ड्स, आप अगर जा रहे हैं SLE आफ्टर जलान का यू अवॉइड करें लेन नंबर 1। हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा इस वक्त ऑन SLE टुवर्ड्स CTE बिटवीन अपर थॉमसन रोड एंड वुडलैंड्स एवेन्यू 2, और मिलेगा व्हीकल ब्रेक डाउन ऑन PIE टुवर्ड्स अचांगी आफ्टर थॉमसन रोड। वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। कमिंग अप नेक्स्ट इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। यूजुअली जब भी हम ये गाना प्ले करते हैं ऑन रेडियो, फीमेल वॉइस में ही ज्यादा इसको प्ले किया जाता है, बट आई वॉन्ट यू टू लिसन टू इट मेल वॉइस में एज वेल। इट्स ब्यूटिफुल वन, एंड समहाउ मैं देख रही हूँ कि मैं पापों की जो फैन हूँ वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बनती हुई जा रही हूँ, बिकॉज वॉट वॉइस टेक्सचर हिज गॉट। जब वो गाते हैं, क्या गाते हैं, दिस वन द गाना यू नो, बट जस्ट आवाज। I'm sure that you're going to love this as well on Radio Masti 24/7 Live.

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: है ना, मजा आया ना। आई नो, आई मीन कभी कभी एक ही गाना किसी और की आवाज में कितना खूबसूरत लग सकता है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं हूँ अंतरा आपके साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती का मंत्रा। जो रेगुलरली सुनते हैं वो तो है ही, और कभी कभी हट के भी कुछ सुन लिया करिए जी, वो भी अच्छा ही लगता है। वेल भाई, कल ही की वो डेट है जब कि हम आपको बता रहे थे कि सलमान खान ने अपना एक बहुत ही कमाल का एक फोटो डाला हुआ है, जहां पे उनके सिक्स पैक एब्स जो है वो नजर आ रहे हैं। वो फुल्ली कवर्ड नहीं है, शर्टलेस वहां पे बिल्कुल लेटे हुए हैं, एंड इट्स काइंड ऑफ अ ब्लैक एंड व्हाइट एंड द हाईलाइट वाज हिज एब्स, या यू कैन नॉट सी हिज फेस। तो उसमें कुछ वैसा सा उन्होंने पोस्ट डाला हुआ था कि अलोन हूँ, लोनली नहीं, और समथिंग लाइक दैट। सो एवरीबडी गॉट यू नो रियली वरिड, जो सलमान खान के फैन बेस है कि अरे भाई क्या हुआ भाई, भाई आप अकेले कैसे, भाई हमें बुला लीजिए, भाई ऐसे कैसे, भाई आपका मन ठीक है ना, आप ठीक हो ना, एंड एवरीथिंग। इतना ज्यादा कि अगले दिन सलमान खान को वापस ही अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे डालना पड़ा। दिस इज व्हाट ही हैज रिटन, अरे यार मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा था। How can I be alone when I have such a large, amazing family and friends? And how can I be lonely when I have you guys, your wishes and duas? I would be the biggest nashukra ever if I say so. कभी कभी लोगों के साथ रहकर पक जाता हूँ, इसीलिए सम मी टाइम। बस इस बार कोई फोटो नहीं ब्रेकिंग न्यूज बना दिया, बस ऐसे ही मम्मी पूछ रही है क्या हुआ बेटा, चिल मारो यार। या कभी कभी मेरे को भी ऐसा लगता है कि नॉट एवरीथिंग व्हाट वी पोस्ट इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। आपने देखे होंगे ना ऐसे इंस्टाग्राम रील्स काफी पड़े होंगे, एंड इट इज ट्रू। हो सकता है कि आपने कोई चीज एकदम बहुत ही जनरली और रैंडमली यू नो सेलेक्ट किया ना, यू थॉट दैट दिस इज सो फनी, इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करें हम इसको पोस्ट ही कर देते हैं। सो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, बट अलग अलग चीजें अलग अलग बातें। और ये भी समझ में आता है कि जब दिल भर आता है, और कभी कभी आप भी हो जाते होगे ना अपने आसपास के लोगों से कि भाई थोड़ा सा मी टाइम चाहिए, बहुत हो गया तो वो मी टाइम ले लेना चाहिए, इट्स अ गुड थिंग। आई नो मैं अच्छी बात है, आज ट्यूजडे है ना, शाम को हमारा शो है डियर मस्ती इन दिल से। आई थिंक आई एम जस्ट काइंड ऑफ जोनिंग इन एंड कमिंग टू दैट मोड अभी से ट्यूजडे वाली मॉर्निंग पे। कहीं अब नेक्स्ट इज अ ब्यूटिफुल गाना जो हमारे रेणुका को बड़ा पसंद है, एंड हमारे काफी सारे लिसनर्स को भी ये गाना बड़ा पसंद है। बना हुआ है हमारे मस्ती टॉप चार्ट्स में, बट बना रहेगा फॉर श्योर, दैट इज फॉर।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा kg मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
1: क्या
2: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो, और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाजी, क्या बात जी।
2: Order today from GG Mart, your personal grocer.
3: हर ट्यूसडे एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
1: What do you mean by दृश्यम 3 में तब्बू नहीं रहने वाली है? Like what do you mean by that? हेलो, एक्सक्यूज मी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा के साथ चल रहा है मस्ती का मंत्रा। गुड मॉर्निंग। मैं जी कह रही थी कि कभी कभी क्या होता है ना, कि हम मूवी हॉल में या फिर जनरली मूवी तरफ सोचते हैं कि ये तो देखनी है बिकॉज ऑफ द एक्टर्स इन इट। भाई तब्बू ने जो एक्टिंग की है दृश्यम में इन द फर्स्ट टू पार्ट्स, इट इज इनक्रेडिबल। लाइक ऑफकोर्स वी ऑल टॉक अबाउट अजय देवगन एंड हाउ अमेजिंग ही वॉज, एंड एवरी अदर एक्टर वॉज वेरी गुड, बट द रोल एंड द जस्टिस तब्बू हैज डन, इट इज लाइक, जब मैं मतलब वापस से कभी आप दृश्यम देखो ना, एकदम स्पाइन चिलिंग टाइप की जो फीलिंग होती है ना, विदाउट शोइंग अस हॉरर और समथिंग लाइक दैट, She was able to do that, so amazing. But ऐसा rumors जो है वो उड़ती खबरें कुछ आ रही है भाई। पहले तो ये था कि शायद तब्बू का comeback हो ही ना इसमें third वाले part में, but director साहब ने कहा है कि तब्बू का comeback होगा, बट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दृश्यम 3 की कहानी। दैट्स व्हाट एवरीवन थिंक्स, दैट यू नो मीरा का जो ट्रैक है इट हैज जस्ट कंक्लूडेड, एंड यही होता है कि द मोमेंट यू थिंक दैट दिस इज गेटिंग ओवर, या कुछ तो छूट गया होगा, देयर इज अ लॉट टू टेल नाउ। आई लाइक इट, ओके। इसीलिए मेरे को मिस्ट्री और थ्रिलर जो है कहानियां बहुत ज्यादा पसंद है, कि कुछ तो रहना चाहिए कि सोचने के लिए कि यार कैसे कब, एंड आई रियली वॉन्ट टू नो दैट हाउ दे आर गोइंग टू, बिकॉज अगर आपने दृश्यम 2 देखी होगी तो कहीं एक तरह से पूरी की पूरी कहानी रैप अप हो चुकी है, जिसको जो मिलना था, जहां जिसको पकड़ना था, वो सारा चीज हो चुका है। But what now? What next? There is still something more which we have missed to see. I want Drishyam 3 jaldi release ho yaar. Kya kar rahe hain? Radio Masti 24/7 live. But let's wrap up this hour. Milte hain agle ek ghante mein on Radio Masti 24/7 live. Good morning.

0: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Pe. One love was all we need, one love. I was totally grooving with that gana just played. 9:00 ho chuke hain, 4 minute, Radio Masti 24/7 Live on Tribe ke saath. Good morning. Technology ki baat karte hain. Aap dekhiye, फोन के हिसाब से देखा जाए तो भाई पहले जैसा था वो तो था ही, लेकिन अब करते करते अब स्मार्ट हो गया तो फिर पहले छोटा था, फिर बड़ा हो गया, फिर स्क्रीन बड़ा होता गया, फिर उसके बाद कहा कि साइड से थोड़ा कर्व कर दो, फिर उसको फोल्ड कर दो, फिर उसको ऐसे कर दो, फिर उसको वैसे कर दो। तो अभी कभी कभी आपको नहीं लगता कि अब व्हाट नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या ही करेंगे स्मार्टफोन में और कितना आगे इसमें जाएगा। There's this video which is going viral and it shows the future of a phone. China में जो already एक pilot program पे शुरू हो चुका है and काफी सारे लोग उसको use भी कर रहे हैं। Transparent phones. Imagine a phone which is transparent. या राइट, लाइक आपके हाथ में जो भी है, मतलब आईफोन है या फिर सैमसंग का कोई भी एंड्रॉयड फोन है, एनीथिंग, वही सेम फोन बट इट इज ट्रांसपेरेंट एंड इट इज गोइंग एब्सोल्युटली वायरल एंड आई वाज स्टंड, क्योंकि एक तो यूनिक डिजाइन प्लस एडवांस टेक्नोलॉजी, राइट, एंड ये जो डिवाइस है इट अपीयर्स लाइक ऑलमोस्ट सी थ्रू, क्रिएटिंग लाइक अ sci-fi jo hai kind of feel aati hai, and you know many users are calling it a glimpse into the future of smartphones. A lot of people, they are quite curious about how technology in this kind of a setup actually works, kyunki transparent design hai, sleek sa appearance hai, innovative sa display hai. So ye concept jo hai आएगा जल्द ही मार्केट में, बट देखने में तो बहुत ही कूल लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीरियसली कि कैसे होगा। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आई थिंक अब तो चश्मे में, रिंग में, ऐसा नहीं लग रहा है कि धीरे धीरे वो जो स्पाई वेयर होते हैं, जो लोग स्पाई करते हैं कि पेन में कैमरा लगा दिया, कहीं पे लगा दिया, सो या थिंग्स आर बिकमिंग लाइक दैट, कि अब सब वैसे करके चाहिए कि हाथ से कर लो और यहाँ से ऑपरेट कर लो, फिर टैटू कर देंगे, स्किन के नीचे एम्बेड कर देंगे। ओके, जैसे जैसे जो जो होता जाएगा सर्स एंड मैडम्स, हम लोग ऑफ कोर्स वी विल बी विटनेसिंग इट थ्रू, दैट इज फॉर श्योर। क्रेजी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर क्रेजी इज अगला गाना फ्रॉम सूरमा, दलजीत पाजी की आवाज ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। गुड मॉर्निंग।
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूं, कभी मैं हूं

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
0: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे हंत्रा।
3: अभी कोई पूछ रहा था, कल ही कोई किसी ने पूछा था कि ऐसे ही बोल रही हो कि GGMart के मैंगोज सच्ची में बहुत अच्छे हैं। बताती हूँ मैं, 9:00 हो चुके हैं, 16 मिनट, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। अंतरा आपके साथ मस्ती का मंत्र चल रहा है। भाई जब कोई इतनी तारीफ करता होगा तो कुछ सोच समझ के ही करता होगा। चलिए, चलो छोड़ो, मेरी बात छोड़ दो, कि ठीक है मत मानो मेरी बात, कि मैं बात कर रही हूँ कि GGMart के मैंगोज बहुत ही ज्यादा यमी है, अल्फांसो मैंगोज से, चाहे वो रत्नागिरी वाले हो, चाहे वो देवगढ़ के मैंगोज हो, केमिकल फ्री हो, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, क्या डिलिशियस है, हेल्थ बेनिफिट्स है, कुछ मत मानो मेरी बात, ठीक है। जिसने हम मतलब उन्होंने कितनी बार लाया हुआ है और कौन है, इतने साल से सिंगापुर में है और हमेशा GGMart online.com से ये आम मंगाते हैं, योगी जी से पूछते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से अबाउट GGMart के आम।
4: Hi, myself Yogesh. So I'm staying in Singapore for almost 6+ years. So GGMart online mangoes taste is authentic. The quality of mangoes is a premium. Yeah, so we tried Alfonso, and then we tried also Devgad Alfonso, Ratnagiri Alfonso, both variety we tried. Taste was absolutely amazing, sweet, juicy and rich in aroma. Actually, truly reminded me a summer of back to India. And I think it's really, really authentic mangoes and very nice mangoes.
3: है ना, मैंने कहा था कि कितने ऐसी चीजें हैं, कितने ऐसी बात है, या फिर कितने ऐसे आम हैं जिनको खा के वो घर वाला स्वाद जो है ना, वो इट जस्ट टेक्स यू बैक टू इंडिया। हाउ मेनी पीपल यू नो गिव यू दैट काइंड ऑफ आम। एंड एनीवेज, इतना अगर आप थोड़ा सा इसमें डीप पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग क्या कुछ नहीं करते हैं आम को जल्दी राइपन कर देने के लिए, उसको और भी डिलिशियस दिखाने के लिए। दैट्स वेयर द केमिकल्स एंड द प्रिजर्वेटिव्स एंड ऑल ऑफ दीज किक्स इन। बट GGMart ऑनलाइन आपसे कह रहे हैं कि वो डायरेक्टली वहां के फार्म से आपको प्योर, एकदम ऑर्गेनिक, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, कि कोई भी चीज इस तरह से राइपन नहीं किया गया है। And yeah, आपकी सेहत का ध्यान रखते हुए, सभी की सेहत का ध्यान रखते हुए, they have got these amazing mangoes. Go register to GGMartOnline.com. Send us a screenshot, take that discount code and just order those mangoes. एक बार कहने पे ले लीजिए, उसके बाद बताइए कि मजा आया कि नहीं आया। Try करना तो बनता है ना, GGMartOnline.com.

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैफिक के साथ। और यहाँ पर ट्रैफिक अपडेट क्या कहता है इस वक्त, चलिए आपको बताया जाए। इस घंटे

में आपको मिलेगा ट्रैफिक में रोडवर्क्स जो चल रहे हैं KJE पर टुवर्ड्स VIE, तो फिर जो है आप अवॉइड करें लेन नंबर 1 और सीधा वहीं से निकलते हुए जाए। बस इतना ही फिलहाल इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट बता रहा है, एंड अपेरेंटली नथिंग एल्स इज हैपनिंग। आई एम श्योर समथिंग एल्स इज हैपनिंग समवेयर, बट वी शैल कीप यू पोस्टेड एज एंड व्हेन वी गेट इट देयर। फिलहाल 9:29 जब हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, आइए बढ़ते हैं कभी खुशी कभी गम से ये वाला गाना सुनते हैं, नॉट द स्लो वन बट बन्नो की सहेली। यस, कमिंग अप नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: Take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Masti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
6: Only on Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore. Check it out.

0: Your weekly mood lift mantra. Only with RJ Antra.
1: भाई झुनझुन के पास ये लाल रंग है ये लाल रंग कभी भी जो है आपको नहीं छोड़ना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर. आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगापुर, और सिंगापुर में झुन के पास अपने सिंगापुर के पासपोर्ट से, ओ माय गॉड, लाइक फॉर हाउ मेनी इयर्स. आई नो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ 9:36 हो चुके हैं यहाँ पे स्टूडियो क्लॉक में. भाई सिंगापुर स्टिल लीड्स द वे 2026 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में विद वीजा फी एक्सेस टू 192 कंट्रीज. जापान एंड साउथ कोरिया जो है इनके बाद में आते हैं, 188 कंट्रीज ईच. फिर डेनमार्क, लक्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड जो कि थर्ड रैंक पे आते हैं विद 186 कंट्रीज. ये इंडेक्स जो है इट कवर्स 199 पासपोर्ट्स एंड 227 डेस्टिनेशंस डेटा को यूज करते हुए. इंडोनेशिया जो है कहीं 64th प्लेस पर है विद ओनली एक्सेस टू 73 कंट्रीज. इंडिया के पास तो हम अभी नहीं जाने वाले हैं, बट वेल आई थिंक ये एक ऐसी खबर है जो एवरी सिंगल ईयर आए, चाहे वो यू नो बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब हो, चाहे वो यू नो बेस्ट यू नो रहने की जगह का खिताब हो, चाहे बेस्ट पासपोर्ट का खिताब हो, है ना. खुश तो बहुत हो रहे होंगे सब के सब जिनके पास यहाँ का लाल रंग का पासपोर्ट है. बड़े लोग क्या ही कहे. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर बड़े लोगों के लिए बड़ी गाड़ी वाला गाना लंबोर्गिनी चलाई जाने हो सैनवी चुट्टा दे दो. हम तो छुट्टे मांगते हुए ही जाएंगे, अब पंजाबी वाला छुट्टा हो या फिर हिंदी वाला छुट्टा, हमारी हालात तो फिलहाल वैसे ही हो रखे. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर स्टे ट्यून्ड.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: वेलकम बैक टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मंत्र आपके साथ यहाँ पर थी। जी हाँ, मस्ती का मंत्र चल रहा था और अब जाने का हो चुका है वक्त। दैट इज राइट भाई, सुबह सुबह जो है बात इसी बात से शुरू की थी कि अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। अब वर्म का तो पता नहीं, लेकिन काफी सारी बातें हो गई, अच्छे अच्छे गाने यहाँ पर सुन लिए एंड यहाँ पे चैटें जो है वो भी उधर भी काफी सारी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर हो गई। बट आई होप दैट यू ऑल हैड अ good time, not only those who were talking to me but also who were kind of busy doing their own things. But Radio Masti 24/7 aapke background mein chalta hua ja raha tha aur kahin na kahin meri aawaz jo hai piche piche aapko yun follow karte hue ja rahi thi. Filhal ke liye jo hai ek ghante ka music cafe ka break and uske baad hamari RJ Nupur yahan par hazir ho jayengi with Masti Mornings. But usse bhi zyada khaas baat ye hai ki shaam ka jo waqt hoga na ladies and gentlemen, wo hoga 5 to 8 wala, bahut hi khaas waqt. Hamara ek naya show जो है अब नया नहीं कह सकते, बट स्टिल आई वुड लाइक टू कॉल इट नया बिकॉज इट्स स्टिल कैचिंग अप, राइट? सो डियर मस्ती दिल से, हमने बहुत ही दिल से ये प्रोग्राम जो है क्यूरेट किया है आप सभी के लिए। इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल सेफ जोन विच वी हैव काइंड ऑफ क्रिएटेड फॉर ऑल ऑफ यू, जहाँ पे आप अपने दिल की बात जो है हमें बता सकते हैं। सो वी रीड लेटर्स ओवर देयर एंड वी गिव अ फ्रेश पर्सपेक्टिव्स अपने हिसाब से, हम जितना समझ पाते हैं उसके हिसाब से अपनी बात उनके जवाब के तौर पे सामने रखते हैं। सो यू हैव नॉट ट्यून्ड इन, यू हैव नॉट हर्ड द शो, देन परफेक्ट डे, परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट आज शाम को 5 बजे इफ यू हैव बीन लिसनिंग टू इट एंड या देन यू नो देन यू विल एनी वेज ट्यून इन एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम। सो बट जस्ट मेक श्योर मैं और हम सारे आरजेस मिलकर अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग बातें, एंड इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फील दैट यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट एनीथिंग, जस्ट 9158963 पर हमें कॉन्टैक्ट करें। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यहां से जाने दें क्योंकि लग रही है जोरों की भूख एंड अब जाके होगा हमारा ब्रेकफास्ट फाइनली। मेरा मोटिवेशन आप देख रहे हो। या आई कंप्लीटली लुक फॉरवर्ड टू इट। आई इवन स्टार्ट इमेजिनिंग कि आज क्या खाएंगे, मजे ही आ जाएंगे ब्रेकफास्ट करके। लाइफ में खुशी ना इतनी ही सिंपल होनी चाहिए। नहीं, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में
4: रहो। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
5: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्र लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti, subah 6 baje se.
3: Mere Karan Arjun aayenge.
0: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. Par haan to sirf super hit back-to-back gaane aayenge. मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। अभी अभी मैंने सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो देखी, जिसे देखकर मुझे लग गया आहा, इंडिया से आई है वीडियो। सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर डेफिनेटली मस्ती मॉर्निंग शो पर वंस अगेन आपसे मुलाकात करने आ चुकी है। एंड द पॉइंट इज कि समटाइम्स वो जो होता है ना, एकदम सुपर से भी सुपर वाली वीडियोस, एकदम ऐसा वाला एहसास जो देती है ना वीडियोस, जिसमें कि लोग अपनी लाइफ को रिस्क देने से पहले चार बार सोचते भी नहीं है, ऐसी वीडियोस अक्सर इंडिया की निकलती है। एंड अभी स्टूडियो में एंटर करने से पहले मैं बस मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल कर रही थी, जिसमें मैंने देखा कि इंडिया के किसी गांव में फाइव सीटर, मैक्सिमम फाइव सीटर एक वैन थी, जिसे 15-20 सीटर में कन्वर्ट कर दिया गया था। मतलब जानबूझकर उसमें भर भर के लोग बिठाए गए थे, और इतना लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में भी जो ड्राइवर साहब है वो टोबैको वगैरह कंज्यूम कर रहे थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। अरे अरे अरे अरे भाई साहब, इतना एडवेंचर तो सिंगापुर के एडवेंचरस पार्क में भी नहीं होता जितना वहां की सड़कों पर दिखाई दे जाता है। मस्ती मॉर्निंग शो पर बातचीत का सिलसिला और गानों का सिलसिला शुरू हो चुका है, सो डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning.
4: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
5: हाँ जी जी,
4: आधा kg मसूर दाल,
5: जी जी,
4: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
5: जी जी।
4: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
5: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
4: क्या
5: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
4: वाजी क्या बाजी।
5: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर।
3: चलो बताओ 2 अक्टूबर को क्या हुआ था। अरे अरे आपको सब पता है, आप अगर बॉलीवुड के असली फैन है तो आपको पता होगा 2 अक्टूबर को क्या हुआ था। हाँ हाँ हाँ, इस दिन विजय और उनका पूरा परिवार

वो पिछली मूवी से बहुत ज्यादा रिलेट ना करते हुए एक अलग लेवल पर ले जाया जाएगा, ऐसा कहा तो गया है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि पिछली मूवी में जब पूरी सच्चाई सामने आ गई थी तो अगली मूवी में दिखाने के लिए कुछ रहा नहीं, तो इस बार दृश्यम मूवी के तीसरे पार्ट में एक अलग सस्पेंस को बरकरार रखते हुए अजय देवगन नजर आने वाले हैं। चलो भाई, अजय देवगन का इंतजार करेंगे। मीनवाइल मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको इंतजार नहीं करवाएगी आने वाले गानों का, तो एंजॉय कीजिए उन्हें। मैं आती हूँ जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन

0: जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। Because sometimes रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से। सम शोज डोंट जस्ट प्ले, दे स्टे विद यू, एंड व्हेन आवर लिसनर्स आस्क फॉर मोर, वी ब्रिंग देम बैक। एनकोर शोज बाय पॉपुलर डिमांड, रिलिव द म्यूजिक, द मोमेंट्स, द मैजिक। Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for encore show timings.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.

0: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
1: देखो कुछ लोग देर आए दुरुस्त आए होते हैं, कुछ लोग होता है कि देर आए पॉपुलरिटी पाए। अरे अरे अरे अरे। एनीवेज मैं आज मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। देखो बहुत सारे सेलिब्रिटीज जब काम करते रहते हैं तो पॉपुलर रहते हैं, लेकिन उन्हीं सेलिब्रिटीज में कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटीज हैं जब काम करते हैं तब इतने पॉपुलर नहीं होते हैं, लेकिन हाँ जब काम छोड़ देते हैं, शादी कर लेते हैं और शादी के बाद कमबैक करते हैं तो शायद उनका पॉपुलैरिटी लेवल बढ़ता जाता है। यस, मैं बात कर रही हूँ अनुष्का शर्मा की। हाँ जी, रब ने बना दी जोड़ी, और ना जाने कौन कौन सी मूवीज में ये आपको इम्प्रेस करती थी, लेकिन अब इन्होंने शादी के बाद एंजॉय करना, अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दिया है। बट हाँ, रिसेंटली इन्होंने एक ज्वेलरी ब्रांड का एडवर्टीजमेंट शूट किया और वो पब्लिश भी हो गया, जिसे देखकर लोग बड़े इम्प्रेस हुए कि आए हाय अनुष्का शर्मा को तो हम मिस कर रहे हैं। वैसे ये पब्लिक जो है ना, वो किसी की नहीं होती है, राइट? मतलब जिसके वीडियो अच्छे लग गए उसकी तारीफ कर दी, जिसकी वीडियो अच्छी नहीं लगी उसकी भर भर के बुराई कर दी। मतलब ये सच में किसी के नहीं होते, राइट? चलिए मस्ती मॉर्निंग शो पर मैं आज रूपर कुछ और भी बातें आपसे करने वाली है, जैसे कि सैफ अली खान के घर में क्या चल रहा है अभी, बताती हूँ इन अ शॉर्ट वाइल।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
3: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
4: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: क्या लगता है आपको, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के घर में कोई दिक्कत विक्कत नहीं होती क्या? उनके घर में सिबलिंग्स में, हस्बैंड वाइफ में, पड़ोसियों में लड़ाई नहीं होती? अरे बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, मतलब जितना आप इमेजिन कर रहे हो ना उससे 5 times ज्यादा। सो मैं आरजे रूपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि कई बार सेलिब्रिटीज अपने घर की बातें कम्प्लीटली तो नहीं बताते, लेकिन जो बताते हैं वो काम का बता जाते हैं। और उससे आप एक आइडिया लगाइए कि भैया रिसेंटली सोहा अली खान ने बताया कि जब भी उन्हें लाइफ में रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए होती है तो वो पता है किसके पास जाती है? अरे अपने भैया हंसी सैफ अली खान के पास, राइट? तो वो चाहे सुख हो दुख हो एडवाइसेस के लिए अपने भाई पास पहुंचती हैं। लेकिन जब उन्हें गॉसिप करनी होती है, 2 का 4 बात करनी होती है, तो वो पहुंचती हैं करीना कपूर के पास। एनीवेज ये सेलिब्रिटीज कई बार ये भी बता देते हैं कि ये जो है ना आपस में इतना भी नहीं लड़ते, परिवार जैसी चीज है इनके अंदर, समथिंग लाइक दैट। तो चलिए मैं आज पर मस्ती मॉर्निंग शो पर कुछ और भी बातें आपको बताएगी, अंदर की बाहर की इधर की उधर की। सो डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

यू नो वॉट, अभी आपको लग रहा होगा कि सोशल मीडिया पे ऐसा क्या चल रहा है जो मैं अपनी पोस्ट के थ्रू उसमें दिखा दूं और मुझे पॉपुलैरिटी मिल जाए, मेरे लाइक्स आ जाए, मेरे कमेंट्स बढ़ जाए, मेरे अकाउंट की रीच आ जाए। तो अगर आप इस डायरेक्शन में थोड़ा भी सोचते हैं तो चलो बता देती हूँ, बचपन में जैसे हम क्रेयॉन से कलरिंग करते थे ना और उलझलूल ए बी सी डी ई एफ लिख देते थे या कोई भी स्पेलिंग लिख देते थे या छोटा सा आर्ट वर्क बना देते थे, फ्लावर्स और एलिफेंट्स या फिर कुछ भी, वो चाहे छोटी सी बतख ही क्यों ना हो, हम ड्रॉ कर देते थे। तो वो जो क्रेयॉन से लिखने का स्टाइल था, ड्रॉ करने का तरीका था, बस वही तरीका सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। अगर आप अपनी लाइफ का कोई भी चैप्टर उसी क्रेयॉन स्टाइल में एआई जनरेटेड इमेजेस के थ्रू सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे तो डेफिनेटली लोग जो है वो आपकी पोस्ट देखना पसंद करेंगे। इट्स इन ट्रेंडिंग यार। चलो भाई, पुरानी बातें किसको पसंद नहीं है। मैं आरजे रूपर मस्ती मॉर्निंग शो पर कुछ ऐसी ही पसंदीदा बातें करती रहती है और करती रहेगी। सो डोंट गो एनीवेयर, आती हूं मैं जस्ट इन अ शॉर्ट। बाय।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर,
3: आपने एक कहावत सुनी है? नहीं सुनी होगी, चलो मैं बताती हूँ। दैट इज चाय से ज्यादा केतली गरम होती है। अरे यार, इसको डिकोड करने के लिए एक एग्जांपल बताती हूँ। कई बार सेलिब्रिटीज जो है ना, वो कुछ भी नहीं बोलते, बहुत प्यार से डील करते हैं, लेकिन उनके जो असिस्टेंट होते हैं, उनकी जो टीम होती है ना, वो बहुत ही कड़वी भाषा में बात करती है और आपके मन में उस सेलिब्रिटी से जुड़े हुए वैसे ही इमोशंस जाग जाते हैं। आपको लगता है ये सेलिब्रिटी भी ऐसा होगा, तभी तो इसकी टीम ऐसी ऐसी बातें कर रही है। हाँ, और ये ऑब्वियस भी है, एंड समटाइम्स ऐसा होता भी है, जो सेलेब्स हैं वो पब्लिक फिगर हैं, वो कभी बुरे बन नहीं सकते, तो वो अपनी सारी बुराइयां जो हैं वो अपने पीआर एजेंट्स के थ्रू फॉरवर्ड कर देते हैं और हमें पता नहीं लगने देते, राइट? एनीवेज, मैं आज मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी, रिसेंटली अमिताभ बच्चन जो हर संडे अपने घर के बाहर फैंस से मिलते हैं, मीटअप करते हैं, तो इस बार उन्होंने कुछ नोटिस कर लिया कि वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, पुलिस है, वो फैंस से अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है, तो उनको फील हो गया कि भाई इनके मन में तो इमेज बन जाएगी कि ऐसे ही होंगे अमिताभ जी, इन्होंने ही बोला होगा कि हमें लठ मार के निकाल देना। तो अमिताभ बच्चन जी ने रिक्वेस्ट किया है कि उनके फैंस से थोड़ा प्यार से पेश आया जाए, और इन्होंने बोल भी दिया इस बार कि अगर मेरे फैंस के संग ऐसा बिहेवियर हुआ तो वो मुझे गलत समझेंगे, राइट? आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से। Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Masti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
1: Only on Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: अरे अरे अरे अरे भाई, बॉलीवुड से अगर किसी का बहुत बढ़िया सिक्का चला है कम उम्र में, हाँ जी 17-18 साल की उम्र में आपको एक बॉलीवुड मूवी मिल चुकी है, वो भी किरण राव के प्रोडक्शन हाउस में, और दूसरी आप साउथ में आनंद देवरा कोंडा के साथ बढ़िया शानदार रोल में आने वाली है, तो किसको बुरा लगेगा। हाँ, सो नेटफ्लिक्स में आने वाली एक मूवी में जो कि साउथ की है, उसमें दिखाई देंगी नितांशी गोयल। राइट, ये वही नितांशी गोयल है जिनको आपने लापता लेडीज में देखा था, और बहुत सारे अवार्ड्स भी इन्होंने जीत लिए हैं डेब्यू से रिलेटेड। एनीवेज, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो सालों तक इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे और उन्हें आज तक वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला जो मिल जाना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ ऐसे फ्रेश फेसेस भी हमारे सामने हैं जो मात्र 17-18, 19-20 की उम्र में ही बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। तो कई बार ये मेहनत भी होती है और उससे भी ज्यादा कई बार डेस्टिनी होती है, और उससे भी ज्यादा ये होता है कि आपने सही वक्त में सही डिसीजन ले लिया। अगर आप थोड़ा भी चूके ना, आ, आ, आ, आ, आ, आ, तो पीछे रह जाएंगे आप। और सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, दुनिया के किसी भी सेक्टर में, लाइफ के किसी भी स्टेज में यही कहानी है बॉस। आज ये रिपोर्ट मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
3: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
4: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
5: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
2: यू नो व्हाट, जिन लोगों को दूसरों की बातों से फर्क पड़ता है ना, ये वो लोग होते हैं जो मन के बहुत कच्चे होते हैं, या फिर उन्हें अपने प्रोडक्ट पर उतना विश्वास नहीं होता है। देखो, जब आप बिजनेस करने के लिए उतरेंगे, आपके प्रोडक्ट को 10 लोग बुरा बोलेंगे, लेकिन 2 लोग अच्छा भी बोलेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप किनकी बातों पर ध्यान दो, लेकिन हाँ, अगर आप उन 10 लोगों की बातें सुनकर अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करते रहे, तो आप किसी नतीजे में पहुंचोगे नहीं। नो कंक्लूजन एट ऑल। उसके बाद क्या होगा कि आपने जो सोचा होगा वो प्लानिंग ही रह जाएगी, राइट? तो आपको खुद पे और अपने प्रोडक्ट पे, अपनी आर्ट पे विश्वास होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हेलो, हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एनीवेज, मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली रामायण मूवी जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ी पॉपुलैरिटी बटोर रही है, बिकॉज इस मूवी का बजट 1600 करोड़ क्रॉस कर रहा है। इसमें रणबीर कपूर एंड साउथ की स्टार जो रिसेंटली आमिर खान के बेटे के साथ भी नजर आई, जुनैद के साथ, साई पल्लवी एज अ सीता जी आपको नजर आने वाली है। लेकिन वो रिसेंटली जब अपनी मूवी के ट्रेलर लॉन्च में नजर आई तो पता चला कि इनको तो हिंदी बोलनी आती ही नहीं है। तो अब ये कंट्रोवर्सी उठ गई थी कि भैया इन्होंने रामायण मूवी में क्या ही बोला होगा जब इन्हें हिंदी ही नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती और ना सीखी है। तो अब इनकी आवाज को डब किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन पब्लिक ना उठा पाए। तो भाई, रामायण मूवी ऑलरेडी इतनी कॉन्ट्रोवर्सी में है VFX की वजह से, स्क्रिप्ट की वजह से, इसकी डेलिकेसी की वजह से, और अब तो साई पल्लवी की वॉइस भी डब की जा रही है। तो आई डाउट इतना पैसा कहीं डूब ना जाए। ये अपने प्रोडक्ट को बार बार चेंज कर रहे हैं यार। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

यू नो वॉट, आपको कभी भी उन लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए जो लोग सुबह सुबह अपने स्टेटस में ऊपर वाले की कुछ कही हुई बातें या उनकी तस्वीरें लगा देते हैं, बिकॉज ऐसे लोग ना दिल के बड़े अच्छे होते हैं यार। ये पहचान है, मैं बता रही हूँ, सुबह सुबह ऊपर वाले को याद करके आरती करना, उनका स्टेटस लगाना, आय हाय हाय हाय, अच्छे लोगों की पहचान है ये। एंड जब ये धार्मिक पॉइंट जो है वो इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि आजकल जेन अल्फा भी इन चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फिल्म मेकर्स भी इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। रणवीर सिंह जो कि धुरंधर मूवी के बाद एक्शन मूवीज में ही नजर आएंगे ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, नहीं नहीं नहीं, इन्होंने मूवीज से जुड़े हुए राइट्स परचेज कर लिए हैं। हाँ जी, अराउंड शिव जी का किरदार निभाने वाले हैं ये, और इससे जुड़ा हुआ जो मूवी का कॉन्सेप्ट है इन्होंने पहले से ही कॉपीराइट करवा के रख लिया है, ताकि आने वाले वक्त में ये अपनी मूवी एक डेवलप कर पाए और मार्केट में उतार पाए, है ना। सो आज रुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूं मैं जस्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा केजी मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी।
3: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
3: क्या जी?
4: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाजी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
0: You know what? जब आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है तो आप बहुत शुरू से शुरू करते हैं. आप उस क्वेश्चन में जो छिपा हुआ है शब्द उसका मतलब समझाते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल देते हैं, फिर उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो बताते हैं, फिर उसका एंड में कुछ ना कुछ कंक्लूजन करते हैं ताकि आपका जो आंसर है ना वो हरा भरा फला फूला नजर आए. राइट, आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है. और ये सिर्फ किताबों पर लिखने के लिए बड़े बड़े आंसर नहीं होते, बोलने में भी लोग बड़े बड़े आंसर बनाने के लिए ऐसे ही मिक्स एंड मैच कर लेते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अभी कांस में आलिया भट्ट से पूछ लिया गया.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए, ऑर्गेनिक केमिकल फ्री स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़ रत्नागिरी एंड मोर नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
3: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
4: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
5: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

देखो, अगर आपने सीजनल काम नहीं किया ना, तो आप पीछे रह जाने हो यार। देखो, इसका एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। समटाइम्स हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि अपने जो सेलिब्रिटीज है ना, वो किचन में गए, उन्होंने अपने सुंदर सुंदर हाथों से मैंगो को छीला, फिर उसका मैंगो शेक बनाया, प्लेटर में सजाया और फिर घर वालों को खिलाया। ऐसी वीडियोज आप भी बना सकते हो। ऐसे वीलॉग्स बनाने से पहले अगर आप इंडिया से इम्पोर्टेड मैंगो मंगवा लो तो क्या रहेगा। हाँ, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जी मार्ट आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल मैंगो सीजन ऑफर, जिसमें आपको देवगढ़ के अल्फोंसो मैंगोज मिल रहे हैं 39 सिंगापुर डॉलर पर बॉक्स में, रत्नागिरी अल्फोंसो मैंगोज मिल रहे हैं आपको 35 सिंगापुर डॉलर पर बॉक्स में। इवन आपको 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है इफ यू यूज द कोड new10 NEW10 राइट। एंड मैक्सिमम जगह जब कहा जाता है ना कि आपको मैंगोज इम्पोर्टेड मंगवाए जाएंगे, दिए जाएंगे, टेस्ट होगा, ये होगा, तो उनमें ना केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। वो कैल्शियम कार्बाइड हो सकता है या जिससे मैंगो खराब ना हो, लेकिन जब आप उन मैंगोस को खाते हैं ना, तो आपकी हेल्थ के लिए वो कंजम्पशन बहुत खराब होता है, जिससे आपको वॉमिटिंग, डायरिया और भी बड़े बड़े इश्यूज, इवन कैंसर तक हो जाता है। लेकिन ggmartonline.com जो कि आपका ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप है, ये आपको ऐसे ऑर्गेनिक मैंगोज दे रहा है जिसमें कोई हार्श केमिकल नहीं है, तो यू कैन टोटली रिलाई ऑन इट राइट। तो डेफिनेटली पहुंचिए ggmartonline.com पर टू ऑर्डर ऑल द थिंग्स ग्रोसरी से जुड़ा हुआ या फिर मैंगोज। आज मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: क्या बात है। इस टॉपिक पर इतना खूबसूरत कन्फेशन मैंने आज तक किसी का नहीं देखा है, जितनी खूबसूरती से आमिर खान के बेटे जुनैद ने इसे एक्सप्लेन कर दिया है। सो हेलो, हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड आपको तो पता ही होगा, अब तो आपको क्या, बच्चे बच्चे को पता है नेपोटिज्म क्या होता है। नेपोटिज्म में हीरो का बच्चा हीरो, हीरोइन का बच्चा हीरोइन, डायरेक्टर का बच्चा डायरेक्टर बन जाता है, एंड लोग इसे नेपोटिज्म बोल देते हैं। वो बात अलग है कि गली मोहल्ले कॉलोनी में हर जगह बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन रहा है, सीए का बेटा सीए बन रहा है, समथिंग लाइक दैट। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो जुनैद खान जो कि आमिर खान के बड़े बेटे हैं, सो मूवीज भी इनकी आई है 2 से 3 बॉलीवुड में, एंड इन्होंने थिएटर्स भी मचक के बिल्कुल घोट के पिया हुआ है, अच्छे से रिहर्स किया हुआ है, बस एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने की देर है। लेकिन इन्होंने इस बार इंटरव्यू में ये कन्फेस कर लिया है कि मैं इस बात को मानता हूं कि नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है और मुझे जो फिल्में मिल रही हैं वो डेफिनेटली मुझे मेरे डैड की वजह से, आमिर खान की वजह से मिल रही है, वो नहीं होते तो मुझे कुछ नहीं मिलता। आए हाय हाय हाय, इतना मक्खन की तरह कौन कन्फेस करता है, आप जरा मुझे बताएं। ऑन दिस नोट मी आर जे नुपुर साइनिंग फॉर नाउ, एंड मुलाकात होगी बहुत जल्द। चलता अपना ख्याल रखेगा, आप लोगों का ख्याल रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: सम शोज डोंट जस्ट प्ले, दे स्टे विद यू, एंड व्हेन आवर लिसनर्स आस्क फॉर मोर We bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
3: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
4: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
5: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
5: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

चार्ट्स टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20, पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स, मस्ती टॉप 20, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009. Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: Every voice begins with a dream, a note that dares to fly. From Singapore to the world, Music Beyond Boundaries Season 4. Watch Music Beyond Boundaries only on Musti AVI, powered by Musti Media Network Singapore. For show timing and more, stay tuned to Radio Musti 24/7 Live. One world, one sound, one love. Music beyond boundaries, beyond borders, beyond time.
1: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वाइल्ड एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म। यू सी, ट्यून इन टू मी ऑन मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: का पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को वो डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहाँ काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: अर्जुन आएंगे
1: ना, करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: I love you, रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats.

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे। जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट, तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live.

0: part of Musty Media Network Singapore.
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: सस्याकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है
2: तुमको लेकर
1: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है
3: मुझे चांद पे ले चलो
1: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
3: रात अकेले
4: जोश में रहो
5: Monday blues? Not on our watch. Wake up to world news, fresh updates, aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
6: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
7: Check it out.
4: Josh me raho.
8: Mere Karan Arjun aayenge.
0: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से। लास्ट फ्यू वीक्स, आप जानते हैं, इतना ब्यूटिफुल समथिंग हैज बीन हैपनिंग। What started as a radio show, धीरे धीरे एक ऐसी जगह बन गया है जहां पर लोग अपने आप ही अपना दिल हमारे सामने खोल रहे हैं। Dear Masti, दिल से। Because sometimes रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: हमने सोचा था कुछ लेटर्स आएंगे, ऑनेस्टली हम इतनी ऑनेस्टी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे।
2: लोगों ने हमको लिखा है, जी हाँ, आप सभी ने हमको लिखा है अबाउट एंजाइटी, अबाउट हार्ट ब्रेक, फैमिली प्रेशर, लोनलीनेस, ट्रस्ट इश्यूज, करियर कंफ्यूजन। और हर हफ्ते एक बात क्लियर होती जा रही है, पीपल डोंट जस्ट वांट आंसर्स, दे वांट टू बी हर्ड। और आज के लेटर्स भी बहुत रियल हैं। किसी का सवाल है, डू आई रियली वॉन्ट टू नो अबाउट माई पार्टनर्स पास्ट। कोई कन्फ्यूज है कि क्या मुझे अभी, शुड आई हैव अ बेबी नाउ या वेट करना बेटर है। और किसी ने लिखा है अबाउट कॉन्स्टेंट फाइट्स इन अ रिलेशनशिप, जहां प्यार तो है बट पीस जरा मिसिंग है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बिकॉज लाइफ में ब्लैक एंड व्हाइट आंसर्स बहुत कम होते हैं। कभी इमोशंस और लॉजिक फाइट करते हैं, कभी हार्ट और टाइमिंग। तो अगर आप भी किसी कंफ्यूजन, किसी इमोशनल क्रॉस रोड या किसी अनसेड फीलिंग के साथ जी रहे हैं, तो राइट टू अस, इट्स डियर मस्ती, दिल से, जहां हम बिल्कुल जज नहीं करते, सिर्फ सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बिकॉज समटाइम्स कहते हैं ना, हमारा वो फेवरेट वाला लाइन, रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको उन लोगों से ज्यादा समझ लेता है जो रोज आपके आसपास होते हैं। मैं हूं रेणुका, पहचान तो गए होंगे आप अब तक। और चलिए शुरू करते हैं आज की पहली चिट्ठी, बिल्कुल इस गाने के उस पार। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू डियर मस्ती, दिल से।
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
3: तुमको लेकर
2: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
3: मुझे चांद पे ले चलो।
2: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू रात।

0: तो चलिए उन गानों के इस पार इंतजार आपका कर रही है रेणुका। दिस इज डियर मस्ती दिल से और आप हैं हमारे साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7। नो फिल्टर्स नो जजमेंट जस्ट योर लेटर्स डियर मस्ती दिल से। और ये चिट्ठी बहुत ही रियल है और बहुत ही खास है मेरे लिए। इनका कहना है, हाय डियर मस्ती दिल से, आई बीन इन सिंगापुर 8 साल हो गए हैं। फ्रॉम द आउटसाइड पीपल थिंक लाइफ हियर इज सॉर्टेड, स्टेबल कंट्री, गुड स्कूल्स, क्लीन लाइफ, लेकिन ऑनेस्टली बहुत थकावट हो रही है। आई एम ऑन एन एम्प्लॉयमेंट पास, माय वाइफ इज करंटली नॉट वर्किंग क्योंकि वो हमारे बेटे का ध्यान रखती है जो यहाँ पढ़ रहा है। एवरी मंथ बाय द टाइम रेंट, स्कूल एक्सपेंसेस, ग्रोसरीज, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, बेसिक बिल्स आर पेड, देयर इज बेयरली एनीथिंग लेफ्ट फ्रॉम माय सैलरी। We are not living luxuriously at all, but still it feels like we are only surviving. The bigger problem is that I don't even enjoy my job anymore. The pressure is constant. Every restructuring announcement or manager meeting gives me anxiety. I keep thinking, what if I lose this job? One bad quarter and our entire life can collapse. Sometimes I feel like resigning and taking a break, but then fear kicks in immediately. लोगों का कहना है कि इंडिया वापस चले जाओ अगर इतना स्ट्रेस है, बट आफ्टर स्पेंडिंग ईयर्स हियर, सिंगापुर फील्स लाइक होम नाउ। माई चाइल्ड इज सेटल्ड हियर, आवर रूटीन इज हियर, एंड ऑनेस्टली मुझे ये भी नहीं पता अगर मैं दोबारा से सब कुछ रीस्टार्ट कर सकता हूँ कहीं और। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो डोंट सी अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर विद द स्ट्रेस एंड अनसर्टनटी। आई फील स्टक बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हैप्पीनेस। एम आई बींग अनग्रेटफुल? Should I continue for stability even if I am unhappy, or should I take a risk before burnout affects my health and family life? Would really like to hear your thoughts and experiences on this. Confused, tired and worried in Singapore. ओके, सो वी गोना टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। ये सवाल जो है आपका, इतना बता सकती हूँ कि सिर्फ आपका अकेले का सवाल नहीं है, हम में से बहुत से लोग इंक्लूडिंग मी एक टाइम पर इस देश में आए थे, एम्प्लॉयमेंट पास पर आए थे, और फिर वक्त गुजरता चला गया और हालात बदलते चले गए। तो ये नहीं कहूँगी कि सबके हालात बेहतर होकर ही बदलते हैं, कुछ नहीं भी होता है। तो झूठी आपको मैं बिल्कुल सांत्वना नहीं दूंगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए, वापस आके आपके इस सवाल पर पूरा गौर फरमाएंगे। ठीक है, ऑन रेडियो मस्ती, दिस इज डियर मस्ती दिल से।
1: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
5: हाँ जी जी,
4: आधा kg मसूर दाल,
5: जी जी,
4: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
5: जी जी।
4: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
5: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
4: क्या जी?
5: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
4: वाजी क्या बात जी।
5: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर आप जुड़े हैं रेणुका के साथ इस समय एंड हमारा शो चल रहा है आपका हमारा वो धीरे धीरे इतना दिल तक पहुंचने वाला शो कि बहुत ही पॉपुलर होता चला जा रहा है। ये आप सभी जुड़ने लगे हैं इसमें, लिखने लगे हैं, हमसे बात करने लगे हैं। इट्स कॉल्ड डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती। अभी अभी हमने एक सवाल पढ़ा था थोड़ा सा इस गाने के इस ब्रेक से पहले हमने पढ़ा था अबाउट दिस लवली लिसनर हुज रिटन टू अस। ही इज एन एम्प्लॉयमेंट पास होल्डर इन सिंगापुर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द वे सिंगापुर लाइफ इज एंड इस समय इस असमंजस में कि क्या करूं मैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप इस तरह से फील कर रहे हैं जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, यू आर नॉट अलोन। बहुत से लोग सिंगापुर में साइलेंटली दे आर कैरिंग द एग्जैक्ट प्रेशर, especially expats and EP holders. The fear is not just about a job, it's about housing, children, visas, identity, family ki stability and the life jo aapne banayi hai over the years. The problem is that many people compare salaries, lekin koi bhi honestly emotional cost of living ke bare mein baat nahi karta. You don't make a drastic decision when you are emotionally exhausted. Burnout can make even small problems look permanent. To अपने से ये मत पूछिए शुड आई क्विट टुमारो, मे बी अपने से ये पूछिए कि क्या 6 से 12 महीने का मैं एक प्लान बना सकता हूँ, क्या मेरी वाइफ स्लोली कैन शी रीस्टार्ट वर्किंग पार्ट टाइम या रिमोटली, क्या हम एक दो ऐसे मेजर वाले खर्चे टेम्प्रेरली रिड्यूस कर सकते हैं, या क्या आप एक और नौकरी ढूंढ सकते हैं बिफोर रिजाइनिंग, या क्या आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपने हेल्थ और मेंटल पीस को बिफोर थिंग्स गेट वर्स। कभी कभी आंसर इमीडिएटली छोड़ना सिंगापुर को नहीं होता, समटाइम्स इट्स नॉट स्टेइंग एंडलेसली ईदर, लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शंस धीरे धीरे ताकि जो आपका फियर है जो डर है इट डजंट कंट्रोल एवरी डिसीजन। सो रिमेंबर योर चाइल्ड डज नॉट ओनली नीड अ सक्सेसफुल पेरेंट, योर चाइल्ड नीड्स अ मेंटली प्रेजेंट एंड इमोशनली हेल्दी पेरेंट एवरी टाइम। एंड टू

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: Dear Masti, दिल से, because sometimes रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
3: कितना अच्छा होता ना कि हम अपने अंदर ना कंट्रोल शिफ्ट डिलीट का एक ऑप्शन रखते, पुरानी यादों को खटाक से डिलीट कर देते, कुछ भी बुरा नहीं लगता। कितना अच्छा होता, पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। हम इंसान हैं और हम पुरानी बातों को सोचकर हंसते भी हैं और रोते भी हैं। फिलहाल मैं आरजे नुपुर डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ है, एंड आगे बढ़ने के साथ साथ अभी जो मेरे हाथों में खत आ चुका है उसमें भी कुछ पुरानी बातों से जुड़ा हुआ किस्सा नजर आ रहा है। सो अभी जो लेटर है उसमें लिखा हुआ है कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ और अभी मेरी रिलेशनशिप बहुत ही ताज़ी सी है, अभी हमें ज़्यादा वक्त नहीं हुआ एक दूसरे को डेट करते हुए। बट मेरे अंदर बार बार एक सवाल आ रहा है कि क्या मुझे मेरे पार्टनर के पास्ट के बारे में जानना चाहिए या फिर इंतज़ार करना चाहिए कि वो खुद ही ग्रेजुअली मुझे बता दे। सो व्हाट डू यू थिंक, पूछ लूँ या नहीं? अच्छा हुआ आपने मुझसे ये सवाल पूछ लिया अपने पार्टनर से पूछने से पहले, राइट? एनीवेज, एक बात है कि देखो, पास्ट जानना गलत नहीं है लेकिन पास्ट में जीना बहुत खराब हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ प्रेजेंट में नहीं जी रहा है, वो अपनी पास्ट की यादों में जी रहा है, या आपको अपने पुराने पार्टनर से बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहा है, या आप अपने पास्ट से उसे कंपेयर कर रहे हैं, तो एक दूसरे को पास्ट के बारे में बताइए। अदरवाइज आप लोग मूव ऑन कर सकते हो यार, लाइफ का मतलब ही मूव ऑन होता है। और हाँ, कभी ऐसे फुर्सत के पलों में बैठो, शाम को डिनर कर रहे हो या फिर कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो बातों बातों में बता दो कि मेरा जो पहले वाला था ना उसके अंदर ये बात नहीं थी जो तुम्हारे अंदर है। आप इस तरह से प्यार से ग्रेजुअली अपने पास्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दोगे ना तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, और क्या पता आप जो जानना चाहती हो या चाहते हो वो आपको सामने से पता चल जाए। हाँ, तो ऐसे कुरेदना नहीं है, इस गाने की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करना है।
4: जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरी महबूबा।
3: बिल्कुल, ऐसे खूबसूरत गाने रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर डियर मस्ती दिल से शो पे चल रहे हैं। हम सभी आरजेस आपसे रूबरू बातें कर रहे हैं

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, जहां हम बात करते हैं आपके दिल की और आपके दिल की बातों की थ्रू योर लेटर्स एंड थॉट्स एंड योर इमोशंस। और अब वक्त है आपकी अंतरा का कि वो पढ़े अपना ये लेटर। डियर मस्ती, क्या शादी ही लाइफ में सब कुछ होती है? Why do I have to follow a certain norm and rule book of the society? शादी कर लो उम्र निकल जाएगी, यही सुनने को मिल रहा है आजकल हर तरफ से। And honestly, जितना भी लोग बोले उतना ही मेरा मन नहीं करता। मैं रेडी नहीं हूँ उस चीज के लिए। करियर में अभी बहुत कुछ करना है, बहुत ट्रैवल करना है, दुनिया देखनी है, नए लोगों से मिलना है। I want to date more before I get tied into responsibilities. ये तो ऐसा लग रहा है कि हर यूथ की आवाज है कि हमें क्यों बताया जा रहा है कि कब क्या करना है। Why do we have to follow a manual? So my dear listener, सबसे पहले तो there is nothing of course wrong with feeling this way, और मुझे लगता है आजकल हर कोई ही ये feel कर रहा है, and I'm glad that people are talking you know openly about it. देखिए, शादी beautiful हो सकती है, but I think वो तभी होता है जब वो आपकी choice हो and not just you know society का timeline। वो एक दौर था जब ये सारी चीजें चल जाती थी, क्योंकि वो दौर अलग था and things had worked out that way and that point of time. But अब वक्त अलग है, बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है, बहुत कुछ evolve कर चुका है mindset and दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। And honestly, अगर आपको लगता है कि आपको अभी फिलहाल खुद को explore करना है, career पे focus करना है, travel करना है, अपनी individuality जो है उसको समझना है, then maybe this is exactly what your heart needs right now. उसमें कोई भी guilt नहीं होना चाहिए कि क्योंकि ये जो society का noise है ना, वो हमेशा से ही loud रहा है कि वो ना चाहते ही नहीं है कि कभी कभी हम अपनी आवाज़ जो है वो दिल की सुने। I think it's like coming मेरे भी दिल के बहुत अंदर से ये सारी की सारी बातें। But at the end of the day, आपको अपनी लाइफ जीनी है, सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करते रहना है सबको। एंड यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है भागना और रेडी ना होना, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। सो इट्स नॉट दैट यू आर नॉट सेइंग नेवर, एंड इवन इफ यू आर, इट हैज टू बी योर कॉल कंप्लीटली। अभी इफ यू आर सेइंग नॉट येट, मुझे लगता है इट्स वेरी ब्रेव एंड ऑनेस्ट ऑफ यू टू ए एडमिट इट एंड जस्ट टेल एवरीबडी अराउंड यू। या Take your time, grow, travel, explore, meet people. सबसे important, understand yourself. Because the better you know yourself, the better choices you make for the future. Hope my सवाल आपके सवाल का जवाब जो है helps you out. On Radio Masti 24/7 Live, let's move on.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। जी हाँ, अभी बारी है आपकी अंतरा की टू टेक यू थ्रू द नेक्स्ट लेटर। अगर आपने पहली बार ट्यून इन किया है तो लेट मी टेल यू क्विकली दैट हमने जो है यहाँ पर ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव एक सेफ स्पेस ओपन करने का सोचा, जिसको हम बुलाते हैं डियर मस्ती दिल से, जहाँ पर लोग हमें जो है चिट्ठियाँ लेकर भेजते हैं, यानी कि ईमेल्स पे या फिर मैसेजेस से, और हम कभी भी उनका नाम नहीं लेते। वी जस्ट रीड द लेटर्स एंड वी जस्ट टॉक अबाउट इट एंड गिव आवर पर्सपेक्टिव, आवर व्यूज ऑन इट। आल्सो आई वुड लाइक टू से दैट कभी आपको लगे कि आपको उस बारे में कुछ कहना है तो फील फ्री टू डू सो 9158 5183। वेल, हियर वी गो। तो हमारी चिट्ठी ये कहती है दैट डियर मस्ती, मैं और मेरे लाइफ पार्टनर के बीच में वैसे तो सब कुछ ठीक है, पर एक चीज है जो मुझे हमेशा बॉदर करती है। हाउ मच इज इनफ इन अ रिलेशनशिप? घर का, बाहर का, फैमिली का, ऑलमोस्ट हर चीज का ख्याल मैं रखती हूँ एंड आई फील एग्जॉस्टेड। सिर्फ और सिर्फ उसको खुश रखने के चक्कर में फिर भी लगता है कि ही इज नेवर कंटेंट। और अक्सर झगड़ों में ये सुनने को मिलता है दैट तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, ये इनफ नहीं है। आई डोंट लाइक इट। व्हाट वुड यू हैव डन? So my dear listener, सबसे पहले तो I am glad that you acknowledged that आप exhausted हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग ये acknowledge ही नहीं करते हैं, बस करते चले जाते हैं। कभी कभी relationships में ना हम इतना ज्यादा give करने लगते हैं कि धीरे धीरे हम खुद को पीछे छोड़ देते हैं, और फिर एक दिन body थक जाती है, mind irritate हो जाता है, और दिल ऐसे ही पूछता है कि मेरे लिए कौन कर रहा है। देखिए, लव और एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिलेशनशिप में, बट कॉन्स्टेंटली प्रूविंग योर सेल्फ, या दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग। अगर आपको हर वक्त ये फील हो रहा है कि आपको इनफ होने के लिए और कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, तो शायद प्रॉब्लम सिर्फ एफर्ट की नहीं है, कम्युनिकेशन की भी है। और इसीलिए मुझे लगता है दैट यू नीड टू टॉक इट आउट, किसी झगड़े में नहीं, कभी गुस्से में नहीं, नॉट वाइल प्रूविंग पॉइंट्स, बट मे बी अ काम मोमेंट विद कंप्लीट ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी। उन्हें ये बताइए कि आप रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है सिर्फ आप ही सब कुछ फील कर रही हैं, आप ही सब कुछ निभा रही हैं, और जब बार बार कमी सुनाई देती है तो इमोशनली आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही हैं। कभी कभी क्या होता है ना, सामने वाले को ये रियलाइज ही नहीं होता है कि उनके वर्ड्स कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे मे बी स्पीकिंग फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, बट द अदर पर्सन इज जस्ट एब्जॉर्बिंग इट इमोशनली। एक और बात, हेल्थी रिलेशनशिप में सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि घर का काम कौन कर रहा है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन हैंडल कर रहा है, इट इज ऑल्सो अबाउट दैट डू यू फील इमोशनली सेफ विद ईच अदर, एंड ऑल्सो आपकी वैल्यू सिर्फ इस बात से डिसाइड तो बिल्कुल भी नहीं करती होती है कि आप कितना करते हो। समटाइम्स डूइंग लेस एंड कम्युनिकेटिंग मोर कैन हील अ मच डीपर थिंग्स। सो इंस्टेंट ऑफ साइलेंटली कैरिंग ऑल ऑफ दिस इनसाइड यू, मे बी दिस इज द मोमेंट टू सिट डाउन एंड मेक हिम ऑल्सो सिट डाउन एंड से दैट आई लव अस, बट आई ऑल्सो नीड अस टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, बिकॉज रिलेशनशिप्स आर जस्ट नॉट अबाउट वन पर्सन कॉन्स्टेंटली एडजस्टिंग, दे आर अबाउट टू पीपल कंटिन्यूसली अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। होप दिस हेल्प्स। सुनते रहिए डियर मस्ती दिल से।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: रेडियो मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: यू नो व्हाट, हम मूवीज से इतना ज्यादा इंस्पायर हो चुके हैं कि गलत एग्जाम्पल सेट करते जा रहे हैं। अच्छी चीजें कभी नहीं सीखते, गलत गलत सीखते जा रहे हैं। सो हेलो, हाय, मैं आरजे नुपुर, डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ। एंड डेफिनेटली हम सभी आरजेस के हाथों में आपके भेजे हुए लेटर्स हैं, आपकी बातें हैं, आपके सवाल हैं। और अभी जो मेरे हाथ में लेटर है उसमें लिखा हुआ है कि क्या हर स्ट्रांग रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि मेरी रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और मैंने कहीं सुना था, अपने किसी दोस्त से पूछा था, तो मुझे पता चला कि जहाँ प्यार होता है वहाँ तकरार होती है, समथिंग लाइक दैट। और मैं इन सारी लड़ाइयों को बहुत ज़्यादा कॉमन भी लेने लगी हूँ, क्योंकि लड़ाई हो जाना बहुत ही आसान है, लेकिन लड़ाई के बाद दोबारा बातें करना ये बहुत मुश्किल है। देखो, लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होती हैं, फाइट्स होना प्रॉब्लम नहीं है, हर बात पर चुप रहना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप दोनों को एक दूसरे का कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया, आप एक दूसरे को बताकर लड़कर उसे ठीक करवा दे रहे हैं, तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप की एडवाइस होती है। लेकिन अगर आपने शाम को 5 बजे किसी टॉपिक पर लड़ाई करी और रात के 9 बजे जब आप सोने भी जा रहे हैं ना, तो भी आप एक दूसरे से चेहरा नहीं मिला रहे हैं, दैट इज मोर दिक्कत। हाँ, तो आपको लड़ाई करनी है, थोड़ी सी देर में अपना गुस्सा शांत करना है, फिर दोबारा से अपनी रिलेशनशिप में आप जैसे थे वैसा बन जाना है। ऐसे रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ती है। सो मेरी बातों का ध्यान रखिएगा, वरना माइंड दैट। चलिए इस गाने को एंजॉय कीजिए। बिल्कुल, मैं आज इन पर डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ बनी हुई है।
2: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि हमें रेड फ्लैग्स नजर आते हैं, बट समहाउ हमारे इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं दैट वी जस्ट चूज टू इग्नोर इट, क्योंकि हमें लगता है कि भाई हो सकता है कि ये वापस से नहीं हो, क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में। यही सारी चीजें मेरे अभी जहन में चल रही है क्योंकि अगली चिट्ठी कुछ इसी तरह की है और इसी बारे में कुछ हमसे कहना चाह रही है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं हूं अंतराम के साथ, आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से। और चलिए अगली चिट्ठी की ओर जो है बिल्कुल बढ़ जाते हैं। डियर मस्ती, यू ऑलवेज मेक्स फन ऑफ मी, इट हैज स्लोली बिकम अ हैबिट नाउ, और जब मैं कन्फ्रंट करती हूँ समहाउ आई बिकम द बैड पर्सन। फिर बोल दिया जाता है दैट इट वॉज जस्ट अ जोक, तुम इतना क्यों सीरियसली ले रही हो, बट ऑनेस्टली इट हर्ट्स। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस सिचुएशन विद अस। यस, आई विल थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर शेयरिंग योर, इट्स नॉट इजी टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। सच कहूं कई बार रिलेशनशिप्स में ना रेड फ्लैग्स हमेशा ड्रामेटिक तरीके से नहीं आते हैं, कभी कभी वो जोक्स के फॉर्म में आते हैं, टॉन्ट्स के फॉर्म में, मौकरी के फॉर्म में आते हैं। एंड बिकॉज लव एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, हम हर बार ही अपने आप को ऐसा कुछ समझा देते हैं कि चलो अगली बार नहीं होगा, उसका इंटेंशन बुरा नहीं होगा, मे बी आई एम ओनली ओवर थिंकिंग, और वहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है क्योंकि एक साइड पे होता है हर्ट, दूसरा साइड पे होता है अटैचमेंट। एन अटैचमेंट बहुत पावरफुल होती है, इट मेक्स अस इग्नोर थिंग्स, डिले द रिएक्शंस, एंड कभी कभी अपनी खुद की फीलिंग्स को भी हम डाउट करने लगते हैं। पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, रेड फ्लैग्स को नोटिस कर पाना। एंड इफ कॉन्स्टेंटली यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल अबाउट समथिंग एंड ओनली थिंकिंग अबाउट दैट दिस इज समथिंग व्हिच आई एम नॉट लाइकिंग इट, then that's definitely a red flag and you need to act about it. But then again, I think I just need some time to think over it and tell you what I think about it. So let's go for a musical break and let me come back and let's talk about this on Radio Masti 24/7 live. Ye hai Dear Masti Dil Se.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू
1: रात अकेली है।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक एवरीवन, आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। भाई कुछ देर पहले हमने एक लेटर पढ़ा था जहां पे हमारे लिसनर ने हमारे साथ शेयर किया दैट डियर मस्ती ही ऑलवेज मेक्स फन ऑफ मी और जब मैं कन्फ्रंट करती हूँ तो मैं ही बुरी बन जाती हूँ, फिर बोल दिया जाता है इट वॉज जस्ट अ जोक बट ऑनेस्टली इट हर्ट्स। सो माई डियर लिसनर, सबसे पहले तो अगर कोई चीज आपको बार बार हर्ट कर रही है तो उस फीलिंग को बिल्कुल लाइटली मत दीजिए। कभी कभी हम रिलेशनशिप्स में इतना ज्यादा एडजस्ट कर जाते हैं कि अपने हर्ट को हम नॉर्मलाइज कर देते हैं और फिर एक वक्त आता है कि हम खुद ही कंफ्यूज जाते हैं कि क्या वाकई में मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। बट लेट मी टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली, रिपीटेड डिसरेस्पेक्ट रैप्ड एज अ ह्यूमर, इट्स अ नो नो। और अगर हर कन्फ्रंटेशन के बाद कॉन्वर्सेशन जो है सॉल्व होने की जगह आपको ही गिल्टी फील कराया जा रहा है एंड इफ यू आर फीलिंग लाइक दैट तो वो भी एक पैटर्न आगे चलकर काफी कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है। हेल्दी रिलेशनशिप्स में मजाक डेफिनेटली हो सकता है, एब्सोल्युटली लेग पुलिंग भी होती है, देयर इज अ लॉट ऑफ टीजिंग व्हिच हैपेंस राइट, बट देयर इज ऑलवेज अ लाइन और वो लाइन सिंपल है, डस द अदर पर्सन स्टिल फील इमोशनली सेफ विद यू। अगर आपको हर बात पे बार बार इंसल्ट, एम्बैरेसमेंट या हर्ट फील हो रहा है, सामने वाला उसको सीरियसली लेने की जगह डिसमिस कर रहा है, देन मे बी द इशू इज नॉट द जोक एनी मोर, द इशू इज हाउ योर फीलिंग्स आर बीइंग हैंडल्ड। और इसीलिए क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नॉट ड्यूरिंग अ फाइट बट कहना तो पड़ेगा। व्हेनेवर दिस हैपेंस जस्ट टेल दैट पर्सन दैट इट अफेक्ट्स मी, और फिर देखिए सामने वाला उस बात को समझने की कोशिश करता है कि या सिर्फ उसको डिफेंड करने की ही लगा रहता है, वापस आपको गिल्ट ट्रिप पे भेज देता है, क्या करता है। बिकॉज पीपल हु जेन्युइनली केयर फॉर यू मे मेक मिस्टेक्स ओके, बट दे यूजुअली डोंट एंजॉय मेकिंग यू फील स्मॉल रिपीटेडली, है ना। एंड प्लीज लव के नाम पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कंटिन्यूसली इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए। लव शुड फील सेफ, नॉट इमोशनली एग्जॉस्टिंग। और फीलिंग्स जो भी है एंड दोनों तरफ की इनफैक्ट हमेशा ही वैलिड रहेगी, इवन इफ समवन कॉल्स देम टू सेंसिटिव, जस्ट अटेंड टू इट, बिकॉज आपके हाथ में जो है वो आप कर सकते हैं, उनके हाथ में जो है वो कर सकते हैं। अब दोनों मिलकर क्या चाहते हैं वो तो अल्टीमेटली वक्त आने पर ही पता चलेगा। होप दिस हेल्प्स, लव योर सेल्फ द मोर most, that's what I would say. Yeh hai Dear Masti Dil Se, only on Radio Masti 24/7 Live.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए, ऑर्गेनिक केमिकल फ्री स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़ रत्नागिरी एंड मोर नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Dear Masti, दिल से, because sometimes रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रही थी मैं। खैर बीच बीच में ये बाकी सब आ जाते हैं तो मैं रह जाती हूँ पीछे पीछे, लेकिन छोड़ के नहीं गई थी फिलहाल के लिए। हेलो एंड वंस अगेन ऑन Dear Masti दिल से, रेणुका विद यू। Dear Masti, दिल से, because sometimes रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। तो भाई, इस अनजाने इंसान ने आपसे पिछले हफ्ते एक सवाल पूछा था और वो था, What is that one thing which is a big no for you? मतलब बात सुनते ही आप कहते हैं, नहीं ये कभी नहीं हो सकता over my dead body. इस तरह का क्या है वो सवाल? तो आप में से बड़े सारे लोगों का जवाब आया, लेकिन एक ऐसा जवाब honestly जो हमको बहुत ही पसंद आया और relatable भी है। आपने लिखा, माई बिगेस्ट नो, डिसरिस्पेक्ट इन एनी फॉर्म। आई कैन टॉलरेट बैड डेज, आई कैन टॉलरेट मूड स्विंग्स, आई कैन इवन टॉलरेट द ओकेजनल बैड जोक दैट डजंट लैंड वेल, लेकिन द मोमेंट एक डिसरिस्पेक्ट होती है, एक लाइन क्रॉस होती है, वेदर इन वर्ड्स, टोन, एटीट्यूड या बिहेवियर, दैट्स वेयर आई ड्रॉ द लाइन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में हर चीज सॉर्ट हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सकती हैं, आर्ग्यूमेंट्स कैन कूल डाउन, पीपल कैन इवन ग्रो एंड चेंज, बट डिसरिस्पेक्ट चेंजेस द वे यू सी समवन फॉरएवर। और एक बार वो लाइन क्रॉस हो जाए तो बहुत ही मुश्किल होती है टू गो बैक टू व्हाट इट वाज। सो नाउ आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। जी हाँ, ये बात है, सही है कि नहीं है? आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू विल अग्री दैट डिसरिस्पेक्ट एंड अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जो है ना चीज़ें, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जिंदगी में। शुरुआत में हम किसी को ढील दे भी दें, धीरे धीरे आगे जाके हमें लगता है यार हमने बहुत गलत किया, क्योंकि वापस रिस्पेक्ट अर्न करना इज नॉट ईजी। सो रिमेंबर, आज का भी हमारा सवाल एक ही है, चाहे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे फ्रेंडशिप्स हैं, या ऑफ कोर्स आपकी जॉब की जगह है, कॉर्पोरेट रोल है, या आपके बिजनेस का ऑफिस है, कहीं भी डिसरिस्पेक्ट, वेल द आंसर इज नो नो नो। तो हमारा सवाल इस हफ्ते भी यही है, व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच इज अ बिग नो नो मैटर व्हाट, बताइए हमको। जी हाँ, यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं हम, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और रिमेंबर इसमें कोई पर्सनल बात नहीं है, तो इस बात का जवाब तो आप दे ही सकते हैं। व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच इज अ नो नो फॉर यू नो मैटर व्हाट, आप बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, ऐसी कौन सी बात है?

भाई आज तो मुझे लगता है मेरी किस्मत में बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट पास होल्डर्स, सारे के सारे एक्सपैट्स और सारी की सारी ऑफिस रिलेटेड परेशानियां. अ वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन रेणुका विद यू. ऑफ कोर्स हमारे तीसरे घंटे में आपका स्वागत है. शुरुआत करते हैं इस चिट्ठी से और साथ ही मैं फटाफट जवाब भी दे देती हूँ. नो फिल्टर्स नो जजमेंट जस्ट योर लेटर्स. डियर मस्ती दिल से. हाय डियर मस्ती दिल से टीम, मैं काम कर रही हूँ सिंगापुर में फॉर अ फ्यू इयर्स. ऑन पेपर माय जॉब इज स्टेबल बट ऑनेस्टली आई एम स्ट्रगलिंग विद ऑफिस पॉलिटिक्स. देर आर पीपल इन माई टीम जो हमेशा बेहतरीन काम नहीं करते बट बहुत ही बढ़िया होते हैं एट इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, बिल्डिंग अलायंसेज एंड समटाइम्स इवन टेकिंग क्रेडिट. एंड आई ऑन द अदर हैंड प्रिफर टू स्टे ऑनेस्ट, फोकस्ड एंड जस्ट डू माई वर्क. प्रॉब्लम इज आई फील इनविजिबल. माई वर्क इज नॉट ऑलवेज रिकग्नाइज द वे आई एक्सपेक्ट. और अब मुझे कन्फ्यूजन है कि क्या मैं भी ये पोलिटिकल गेम्स खेलना शुरू कर दूँ टू सर्वाइव और स्टे ट्रू टू माई सेल्फ एंड रिस्क बींग साइडलाइंड, स्पेशली सिंस आई एम ऑन एन एम्प्लॉयमेंट पास. मैं इंस्टेबिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकती. आई फील स्टक बिटवीन इंटेग्रिटी एंड सर्वाइवल, फ्रस्ट्रेटेड एंड कन्फ्यूज्ड. ऑलराइट, तो भाई आपका नाम हम रखते हैं मिस एथिकल, ठीक है. सो मिस एथिकल आप जो कह रही हैं ना और जो आपकी पर्सनालिटी है, आई एम इन लव विद दैट, लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट. लेकिन आप जो भी वट एवर यू गोइंग थ्रू, मैनी पीपल साइलेंटली गो थ्रू, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट हर वर्क प्लेस पर होती है. द अनकंफर्टेबल ट्रूथ इज समटाइम्स विजिबिलिटी मैटर्स एज मच एज परफॉर्मेंस. बट एक डिफरेंस होता है बिटवीन बींग पोलिटिकल एंड बींग प्रोफेशनली अवेयर. यू डोंट हैव टू गॉसिप और मैनिपुलेट टू सर्वाइव, लेकिन यू ऑल्सो कैनॉट स्टे कम्प्लीटली इनविजिबल और आपको लगे कि हाँ मेरा काम तो चल ही रहा है, वो ही अपने आप बात कर लेगा. तो शिफ्ट ये है, डोंट चेंज योर वैल्यूज बट चेंज योर विजिबिलिटी स्ट्रैटेजी. कम्युनिकेट कीजिए अपना इम्पैक्ट क्लियरली. आपके मैनेजर को इतना समझ में आना चाहिए कि आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सिर्फ अप्रेजल्स के टाइम नहीं, अदरवाइज भी रेगुलरली उनको पता होनी चाहिए. बिकॉज बिल्ड अ फ्यू जेन्युइन वर्किंग रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन ट्रस्ट. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना जो क्वाइट हार्डवर्क है ना उसको इनविजिबल हार्डवर्क मत बनने दीजिए, क्योंकि वर्क प्लेसेस में लाउडेस्ट पर्सन जीतता नहीं है, इट्स द मोस्ट विजिबल क्रेडिबल वन. And if a system consistently rewards policies over performance, that's also information you need to pay attention to in the long run. Stay honest. Disappear mat hoijiye. Dekhiye, zaruri ye hai ki aapka kaam dikhai de aur aap bhi dikhai de. To isliye kone mein baithkar kaam mat kijiye sirf. That's not enough. That's how today's world is. Corporate life. चलिए इसी के साथ में एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर. इफ यू डू हैव अ फॉलोअप क्वेश्चन आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट. कीप राइटिंग टू अस, इट्स लिसनर एट radiomasti.com.sg. नहीं तो व्हाट्सएप. और हाँ, किसी ने हमसे पूछा कि व्हाट्सएप कैसे करें, आपको पता लग जाएगा हम कौन है. नहीं, आप किसी और के फोन से कीजिए और अपना नाम मत बताइए, हमें कैसे पता कौन हो आप. गुड इवनिंग एंड आई विल टेक अ ब्रेक हियर.

अच्छा, जितने भी लोग यहाँ पे पिछले काफी सालों से रिलेशनशिप में हैं, वो मुझे इस सवाल का जवाब दे कि किसी भी रिलेशनशिप में सालों तक टिकने के लिए प्यार ज्यादा जरूरी होता है या भरोसा? बताइए बताइए। डेफिनेटली भरोसा, अंडरस्टैंडिंग, दोस्ती, बिल्कुल। ये जो प्यार मोहब्बत वाले चोचले हैं ना, ये कुछ ही वक्त में खत्म हो जाते हैं। सो हेलो, हाय, मैं आरजे नुपटियार मस्ती दिल से शो पर आपके साथ है। एंड ये जो मोहब्बत है ना, बड़ी बुरी चीज है। एक बार हो जाती है ना तो बस ये भुलाए नहीं भुला पाते हैं हम लोग। हाँ खैर, अभी डियर मस्ती दिल से शो पर मेरे हाथ में जो लेटर है ना, उसमें क्या सवाल है क्या जवाब है ये तो मैं बता दूंगी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जिनको पसंद करते हैं उन पर भरोसा तो करते हैं ना? वो पहले होना चाहिए, प्यार बाद में भी होगा तो चलेगा। खैर, जिनका सवाल मेरे पास आया हुआ है, उस खत में लिखा है कि क्या अरेंज मैरिज में प्यार बाद में सच में हो जाता है या फिर कभी नहीं होता? अरेंज मैरिज एक कॉम्प्रोमाइज होता है और फिर हमें एक दूसरे के साथ एनी हाउ रहना पड़ता है। मतलब मैं अरेंज मैरिज के फेवर में या अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन इस डायरेक्शन में सोच रही थी तो मैंने सोचा एक सवाल पूछूं कि क्या सच में अरेंज मैरिज में बाद में प्यार हो जाता है। ये सवाल आपने मुझसे पूछा है, अच्छी बात है, लेकिन आप यही सवाल अपने मॉम एंड डैड से भी पूछ सकते हैं अगर उनकी लव मैरिज नहीं थी तो। बिकॉज अरेंज मैरिज में ना सिर्फ दो लोगों का प्यार नहीं होता है, दो परिवारों का मिलन होता है। और वो जो रिचुअल्स शुरू होते हैं ना, जहां से अरेंज मैरिज फिक्स होनी शुरू होती है, उस पल से आपको पल मिल जाता है कि आप सामने वाले शख्स को पहचान ले। एंड उससे भी खूबसूरत चीज, चलो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अरेंज मैरिज के डायरेक्शन में सोच रही हैं तो मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगी जो मुझे मेरे घर से पता चली। एंड डेफिनेटली इंडिया में सारे मेरे बिलोंगिंग्स रहते हैं तो वो लोग मुझे हमेशा बताते हैं, गाइड करते हैं कि कभी भी किसी शख्स को पहचानना हो ना तो उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स, उसके सबसे नियर डियर वंस जो होते हैं ना, उनको देखो। वो इंसान जो है ना, वो उनकी ही परछाई होता है। अगर आपको उनके आसपास वाले बहुत पसंद आ रहे हैं, आप एनी हाउ उन्हें चाहने लगे हैं, ठीक है, तो वो शख्स जो आपका पार्टनर बनने वाला है या बनने वाली है, उसके अंदर भी आपको वो सारी छवि, वो सारी इमेजेस मिलने वाली हैं। तो डर की बात बिल्कुल नहीं है, है ना। सो प्यार से पहले भरोसा ढूंढिएगा और भरोसे के साथ साथ पूरा परिवार कैसा है उस डायरेक्शन पे सोचिएगा।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for

0: जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, why to fear when GG Mart is there?
0: क्या जी?
1: GG Mart, your personal grocer. Just log on to ggmartonline.com. Grocery add to cart करो, check out करो और grocery at your doorstep.
0: वाह जी, क्या बात जी?
1: Order today from GG Mart, your personal grocer. जोश में
2: रहो। एक बात बताइए, अगर आपके पांव पर चोट लगेगी तो वो बताएगा कौन? आप बताओगे ना? हाँ बिल्कुल, आपका दर्द है आप ही बताओगे। सो हेलो हाई, मैं आरजे नूपुर डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ। और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक दिक्कत देखी है, मैंने सोचा आपको बताती हूँ, जो मैं अब ठीक कर चुकी हूँ, कि अगर मेरे संग कुछ गलत हो रहा है, मतलब मन ही मन में कुछ गलत ख्याल आ रहे, तो मैं किसी को बताती नहीं थी। और वो छोटा सा ख्याल कितना बड़ा होता जाता था बाय द टाइम कि वो घबराहट बन जाता था, है ना? तो ऐसा होता है। तो आपकी दिक्कत, आपकी चोट जितनी छोटी है, वो आप अपने दोस्तों से, अपने डियर वन से, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से जितनी जल्दी शेयर करोगे ना, उसका सल्यूशन उतनी जल्दी मिलेगा। और ये जो मॉडर्न जमाना है ना, कि हम लड़कियां बहुत ही ब्रेव होती हैं, हम लड़कियां किसी से डरती नहीं, हम लड़कियों को किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की और लड़के दोनों को ही सबकी ज़रूरत होती है। और आप जैसे ही अपनी लाइफ में किसी पर भी छोटा मोटा इमोशनली डिपेंडेंट होने लगोगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा 30-30% आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सो ट्राई दैट, मन में ग्रजेस मत रखो, शेयर करो। कोई ना मिले तो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर हम सभी आरजेस कर रहे हैं आपका।

आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। जी हाँ, अब वक्त है एक और ऑनेस्ट से एक लेटर का। मैं हूँ आपकी अंशरा आपके साथ यहाँ पर, और लेटर कुछ ऐसा कहता है दैट डियर मस्ती, आई एम ऑलवेज वेरी कॉन्शियस ऑफ हाउ आई लुक। इतना कि बाहर जाना, लोगों से मिलना, सोशलाइज करना भी एक परफॉर्मेंस प्रेशर जैसा फील होने लगा है। जैसे हर वक्त परफेक्ट दिखना है, परफेक्ट लगना है, वरना लोग जज करेंगे। आजकल मुझे इस बात से बहुत एंजाइटी भी होने लगी है। या इट हैपेंस। सो माय डियर लिसनर, सबसे पहले तो आई डोंट थिंक सो यू आर अलोन इन फीलिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। आजकल ऑनेस्टली सोशल मीडिया ने हम सभी को थोड़ा ना सेल्फ कॉन्शियस बना दिया है। इट इंक्लूड्स मी एज वेल कम्प्लीटली। हर जगह फिल्टर्स, पिक्चर परफेक्ट, परफेक्ट बॉडीज, परफेक्ट जिंदगियां, और धीरे धीरे हम नॉर्मल इंसान कम और वॉकिंग परफॉर्मेंस ज्यादा बनने लगे हैं। मुझे याद है मैं भी पहले बहुत ये सोचती थी कि मैं कैसी दिख रही हूँ, लोगों ने ये नोटिस किया होगा क्या, ये आउटफिट ठीक है, ओह यहाँ से नहीं, इस एंगल से नहीं, उस एंगल से नहीं। बट सच कहूँ यार, कभी कभी हम खुद को इतना ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हम मोमेंट को इंजॉय करना ही भूल जाते हैं। एक बात मैंने टाइम के साथ सीखी है, most people are too busy thinking about themselves to notice every tiny thing about you. और जो लोग सिर्फ आउटर अपीयरेंस से किसी को जज करते हैं, ऑनेस्टली उनकी ओपिनियन को इतनी पावर भी नहीं देनी चाहिए। देखिए, टेकिंग केयर ऑफ yourself इज अ ब्यूटिफुल थिंग, राइट? ड्रेसिंग अप इज फन, लुकिंग गुड फील्स गुड। बट जब वो प्रेशर बनने लगे, जब आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ अपीयरेंस पे डिपेंड करने लगे, तो फिर थोड़ा सा रुक के खुद को सॉफ्टली एक हग करने की जरूरत होती है। क्योंकि आप सिर्फ एक फेस, एक बॉडी, एक आउटफिट नहीं हो, आपका ह्यूमर, आपकी काइंडनेस, आपकी एनर्जी, योर वाइब, दैट इज ऑल यू। एंड ऑनेस्टली सबसे अट्रैक्टिव लोग वो होते हैं जो कंफर्टेबल होते हैं इन बीइंग देमसेल्व्स। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट। परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, प्रेजेंट होना जरूरी है। तो अगली बार आप जब बाहर जाओ, ट्राई दिस, इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ डू आई लुक, आस्क योरसेल्फ हाउ डू आई फील, एंड दैट चेंजेस अ लॉट। एंड प्लीज खुद को इतना मत जज करिए, दुनिया ऑलरेडी उस जॉब के लिए काफी सालों से अप्लाई कर चुकी है। होप दिस हेल्प्स। यह डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
3: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Dear Masti, दिल से, because sometimes रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: जी हाँ, और इसी के साथ आज का डियर मस्ती दिल से यहीं पे होता है खत्म। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंशरा, यहाँ पर फिलहाल आपके साथ। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, सच में दिल से थैंक यू उन सभी लोगों को जो अपनी दिल से निकली बातें हमारे साथ शेयर करते हैं। वी रियली रियली फील ऑनर्ड, सच्ची में। कभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई यू नो हार्ट ब्रेक, कभी फैमिली, कभी सेल्फ डाउट, कभी बस वो फीलिंग्स जिन्हें शायद आपने कभी किसी को शायद प्रॉपरली नहीं बोला हो, बोला भी हो तो शायद किसी ने सुना नहीं हो तो शायद समझा नहीं हो, बट थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस विद ऑल ऑफ दैट। और एक थैंक यू हमारे उन लिसनर्स को जो हर एपिसोड में हर इमोशन हर सिचुएशन के साथ हमारे साथ यूं ही जुड़े रहते हैं, चाहे नुपुर हो, चाहे रेणुका हो या मैं हूँ। हम सब जेन्युइनली यही कोशिश करते हैं कि हर लेटर को पूरा थॉट, पूरी सिंसियरिटी और एम्पथी के साथ समझें और उसका जवाब दें, क्योंकि कई बार किसी को बस सुन लिया जाना बस उतना ही काफ़ी होता है, नहीं? और अगर आप भी हमें कभी कुछ लिख भेजना चाहते हैं तो बिल्कुल भेजिए, आप किसी और के नंबर से भेज सकते हैं। नाम लिखना भी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज हमें नाम नहीं जानना है। हमने कभी अनाउंस भी नहीं किया है, आपने ये नोटिस किया होगा, किसी का भी नाम। हम हमेशा डियर लिसनर के नाम से ही उसको बिल्कुल बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप हमारे लिए बस डियर लिसनर हो इस शो पर। और जैसे आप दूसरों के लेटर्स सुनते हो, वैसे ही ये शो सिचुएशंस का भी तो सफ़र ही है ना, कि लाइफ में क्या होता है और कोई उस सिचुएशन को कैसे फील करता है, कैसे रिएक्ट करता है। और अगर कभी आपको लगे कि मैंने भी ऐसा फेस देखा है या फिर आई हैव समथिंग मीनिंगफुल टू से अबाउट दिस, देन प्लीज फील फ्री टू शेयर दैट टू, क्योंकि सेफ स्पेस हम सब मिलकर बनाते हैं विद ऑनेस्टी, विद काइंडनेस एंड पूरे दिल से। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टुडे फॉर टुडेज शो डियर मस्ती दिल से। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ और हमारे साथ का साथ यूं ही बनाए रखें। और रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, वी आर साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर।

सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: लिए यादों का कारवा विद समर। याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: अटेंशन, हमने कहा अटेंशन। अरे हम यादों के कारवा वाली समर हैं। आजकल के ऐरों गैरों की तरह नहीं है जिनके आने पर लोग ध्यान नहीं देते हैं।
2: लेकिन मुझे पता है कि आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार खत्म, लीजिए हाजिर हूँ मैं समर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेकर यादों का कारवा। आज हमारा कारवा सिंगापुर गुजरेगा 1977 के साल से। वैसे सिंगापुर 70s का जो दौर था ना, वो सिनेमा में थोड़ा बदल चुका था। एक्शन के साथ साथ दमदार डायलॉग्स का जमाना आ चुका था। अमिताभ बच्चन, जिन्हें एंग्री यंग मैन कहा जाने लगा था, एक ऐसी पर्सनालिटी जो अब तक के हीरो से बिल्कुल अलग थी, और वो अब तक सुपरस्टार बन चुके थे। वहीं दूसरी तरफ किंग ऑफ रोमांस राजेश खन्ना, जिनका दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और वैसे भी 77 से 78 के बीच उनकी कुछ ही मूवीज आईं, लेकिन 29 अप्रैल 1977 को राजेश खन्ना की एक फिल्म आई जिसे जॉय मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। जी वही जॉय मुखर्जी जिन्होंने लव इन टोक्यो में काम किया था, जिन्होंने लव इन शिमला में काम किया था, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन म्यूजिकल हिट फिल्में दी हैं। छलिया बाबू इस फिल्म का नाम था जिसे जॉय मुखर्जी ने डायरेक्ट किया और जिसमें राजेश खन्ना हीरो थे। एंड दिस वॉज अ ब्लॉकबस्टर। जी देखा जाए तो ये उन दोनों के लिए, राजेश खन्ना और जॉय मुखर्जी साहब के लिए, चैन की सांस थी। जॉय मुखर्जी की इससे पहले वाली फिल्म फ्लॉप थी एंड राजेश खन्ना की तो वैसे भी चल ही नहीं रही थी, लेकिन ये फिल्म हर तरह से शानदार थी। म्यूजिक जबरदस्त था, स्टोरी भी शानदार थी, आप देखेंगे तो बहुत पसंद आएगी आपको। ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी, जॉय मुखर्जी की एकमात्र सक्सेसफुल फिल्म। फिल्म में राजेश खन्ना के अलावा जीनत अमान है, रंजीत हैं, असरानी, ओम शिवपुरी और अचला सचदेव भी हैं। रंजीत जो एज यूजुअल विलेन बने थे, एंड राजेश खन्ना इसमें अलग अलग गेटअप में आते हैं। छलिया बाबू फिल्म में जीनत अमान और राजेश खन्ना की मुलाकात कश्मीर में होती है, जहां ये राजेश खन्ना से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो राजेश खन्ना गाना गाकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, मैं छलिया बाबू। बहरहाल इसी दौरान जीनत अमान के फादर का मर्डर हो जाता है एंड वो मुंबई चली जाती है। राजेश खन्ना उन्हें वहां भी मिल जाते हैं लेकिन अलग अलग रूप में। लेकिन वो क्यों मिलते हैं, मर्डर किसने किया, यही तो सब देखने लायक है। तो जब मौका मिले तो जरूर देखिएगा छलिया बाबू। लेकिन फिलहाल इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। इसका म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और सिंगापुर इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर थे नरीमन ईरानी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इस फिल्म का प्लॉट खरीदेंगे वो, एंड बाद में उन्होंने ये आइडिया डायरेक्टर चंद्र बारूद के साथ शेयर किया। एंड इस आइडिया से पता है कौन सी फिल्म बनी, डॉन। हर अभी तो आप छलिया बाबू के गाने सुनिए और जल्दी से वापस आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। मैं हूँ समर, लेकर यादों का कारवां।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
2: हेलो एंड वेलकम बैक सिंगापुर, मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर यादों का कारवां है। आज मेरे साथ 1977 का साल है भाई, चर्चा में उसी साल की फिल्मों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। इसी साल एक ऐसी फिल्म भी आई थी जिसमें कोई बड़ा हीरो नहीं था, लेकिन फिर भी फिल्म फेमस हो गई, खूब चली, अरे भाई सुपर हिट हो गई वो, सुपर हिट। और इस फिल्म का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तब एक्शन कॉमेडी और रोमांस वाली फिल्में, रोमांटिक फिल्में ज्यादा चलन में थी, लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था। ये एक ऑल एंड ऑल फैमिली ड्रामा फिल्म थी और फिल्म का नाम था दुल्हन वही जो पिया मन भाए। लेख टंडन साहब ने ये फिल्म डायरेक्ट की थी और राजश्री प्रोडक्शन में ये फिल्म बनी थी। लेख टंडन साहब जिन्होंने शम्मी कपूर के प्रिंस, झुक गया आसमान और धर्मेंद्र जी के साथ प्रोफेसर जैसी हिट फिल्में बनाई थी, उनकी न सिर्फ फिल्म थी बल्कि हिट फिल्म थी। और देखिए यही होता है, अगर स्टोरी अच्छी हो तो बिना बड़े स्टार के भी फिल्म अच्छी लगती है, खूब चलती है, और यही लेख टंडन साहब ने दिखाया भी है। इस फिल्म में मदनपुरी साहब थे, इफ्तिखार थे, जगदीप, विजू खोटे और लीड हीरो के रोल में थे प्रेम कृष्ण, जो बाद में फिर टीवी एक्टर बन गए और प्रोड्यूसर भी। उनके टीवी प्रोडक्शन हाउस ने बहुत फेमस सीरियल्स बनाए दूरदर्शन के जमाने में भी और प्राइवेट चैनल्स के जमाने में भी। फिल्म की स्टोरी बड़ी मजेदार है, मैं चलिए दुल्हन वही जो पिया मन भाई की बात कर लेता हूँ। प्रेम कृष्ण अपने बीमार दादाजी के साथ रहते हैं और दादाजी की यही ख्वाहिश है कि वो अपने पोते की बहू का चेहरा देखे, मतलब उनके पोते की शादी हो जाए। वहीं प्रेम कृष्ण एक लड़की से प्यार करते हैं। अब दादाजी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो सब कहते हैं कि भैया उस लड़की को ले आओ जिससे तुम शादी करोगे। प्रेम कृष्ण जब जाते हैं तो पता चलता है कि वो लड़की जिससे वो शादी करने वाले हैं, जिससे वो प्यार करते हैं, वो आउट ऑफ स्टेशन है, किसी फैशन शो में गई है। अब प्रेम कृष्ण पड़ जाते हैं दुविधा में, तो वो एक फूल बेचने वाली को ले आते हैं अपने साथ और अपने दादाजी को दिखाते हैं कि यही वो लड़की है जिससे मैं शादी करूंगा। आ गया ना कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट। तो अगर आपको ये ट्विस्ट को अनट्विस्ट करना है तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी, बड़ी मस्त, बड़ी मजेदार फिल्म है। लेकिन हाँ, मैं आपको इस फिल्म के गाने जरूर सुनवा दूंगा जो महान संगीतकार रविंद्र जैन जी ने कंपोज किए हैं। तो बने रहिए मेरे यानी समर के साथ रेडियो 24/7 लाइव पर। यह सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो।

0: बाल तो देखो,
1: अरे रंग लगाया
0: इसके बाल तो देखो,
1: अरे झूठे मूठे
0: इसके दांत तो देखो।

मर गया वो कैसे बाजार में ऐसे, शरीफों को हम रुसवा नहीं करते मियां जुम्मन, तैयब अली प्यार का दुश्मन, हाय हाय मेरी जान का दुश्मन, हाय।

रहे थे और अखबार में एक ऐसी खबर छपी थी। इतने में ही घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। देसाई जी उठकर दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि सामने प्रयागराज जी खड़े हैं। प्रयागराज जो कि बहुत बड़े कामयाब स्क्रिप्ट राइटर थे उन दिनों में और मनमोहन देसाई की ज्यादातर फिल्में उन्होंने लिखी थी। वो आए तो थे संडे को पिकनिक मनाने के लिए देसाई साहब के फार्म हाउस की चाबी लेने, लेकिन देसाई साहब उनको ये बात सुनाने लग गए, ये जो उनके आइडिया आया था ये खबर पढ़कर। और बस फिर क्या था, दो फिल्मी दीवाने इस छोटी सी बात पर फिल्म की कहानी लिखने बैठ गए और साहब पूरा दिन और पूरी रात बैठकर लिख डाली कहानी, मतलब प्लॉट तैयार कर दिया कि क्या क्या होगा इस फिल्म में। अमर अकबर एंथनी थी ये फिल्म जिसका जन्म कुछ ऐसे हुआ था। उस साल की ये सबसे बड़ी और हिट ब्लॉकबस्टर थी जिसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते और कई रिकॉर्ड्स तोड़े भी। हालांकि ये बात अलग है कि प्रयागराज जी को बीवी से डांट जरूर पड़ी होगी, कहकर तो गए थे कि पिकनिक मनाने चलेंगे और वहीं जाकर बैठ गए। लेकिन सोचिए उस डांट के बदले में आपको कितनी खूबसूरत फिल्म मिल गई। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शबाना आजमी, प्राण, परवीन बाबी, रंजीत, निरूपा रॉय और जीवन भी है इस फिल्म में। आपको सिर्फ एक लाइन में बोलता हूँ कि इस फिल्म का हर एक सीन जबरदस्त है। फिल्म की स्टोरी वही अखबार वाली है जिसमें प्राण के तीन बेटे रहते हैं जो बड़े होकर अमिताभ, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर बनते हैं और जो इनको 15 अगस्त के दिन एक पार्क में छोड़कर चले जाते हैं। निरूपा रॉय इन बच्चों की माँ होती हैं, लेकिन कैसे ये तीनों बच्चे भी बिछड़ जाते हैं और फिर बाद में बड़े होने के बाद कैसे मिलते हैं, ये सब देखने लायक है। यही है सारी फिल्म। अमिताभ बच्चन ने इसमें एक से बढ़कर एक डायलॉग मारे हैं जिसमें मेरा तो सबसे ज्यादा फेवरेट वो है, ऐसा तो इंसान लाइफ में दो ही टाइम भागता है, ओलंपिक का रेस हो या जब पुलिस का केस हो, तुम काहे को भागता है भाई। और वो ब्रांड साहब का, पहचाना इस अठन्नी को, ये वही अठन्नी है जो तुमने मुझको धक्के मार कर दी थी। और गाने तो मस्त हैं भैया, माय नेम इज एंथनी गोंजालेस, मैं दुनिया में अकेला हूँ, दिल भी है खाली, घर भी है खाली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली, हाय जिसे मेरी याद आए जब चाहे चले आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चले आए, रूप महल प्रेम नगर खोली नंबर 420, माय नेम इज एंथनी गोंजालेस, मतलब मैं तो चला गया उसी जमाने में। बच्चन साहब दिखाई दे रहे मुझे अपने टक्सीडो में, आई लाइक इट, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें, भैया इस गाने की एक खास बात है, इसमें इंडस्ट्री के सारे बड़े बड़े सिंगर्स ने गाया है, मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार साहब और मुकेश ने मेरे ख्याल से पहली बार एक साथ गाया, और उनके अलावा लता जी हैं, आशा जी हैं और ऋषि कपूर साहब की कवालियां तो कमाल की हैं, हिट। तो मेरे ख्याल से अब कंप्यूटर भी डिसाइड नहीं कर पा रहा होगा कौन सा गाना सुनाऊं। कंप्यूटर जी क्या कहते हैं आप, दो गाने तो बनते हैं, चलिए तो आपकी मर्जी, अब कौन से दो सुनाएंगे आप, पर्दा है पर्दा सुनाएंगे या फिर शिरडी वाले साईं बाबा सुनाएंगे, कौन सा सुनाएंगे, अब आप ही सुना दीजिए, बहुत सारे हिट गाने। तो आप लोग सुनते रहिए सिंगापुर रेडियो 24/7 लाइव पर, मस्ती से भरा ये शो, ये है यादों का कारवां। पुराने जमाने की कुछ यादें ताजा हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, हमसे भी शेयर कीजिएगा हमारे फेसबुक पेज पर आकर। स्टे कनेक्टेड।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

वेलकम बैक रेडियो 24/7 लाइव पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम यादों का कारवां ले चले हैं 1977 के साल से, उसी साल

0: to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
1: Good morning.
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं यादों का कारवा विद समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। और आज हमारा कारवा गुजर रहा है 1977 के साल से, 1977 की फिल्मों का जिक्र हो रहा है। इसी साल एक फिल्म आई थी चाचा भतीजा। जी, मनमोहन देसाई साहब ने इस साल वैसे चार ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी, जिनमें से पहली थी अमर अकबर एंथनी, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की, और चाचा भतीजा ये ब्लॉकबस्टर नंबर 2 थी। सलीम जावेद प्रयागराज ने इसे लिखा था और ही मैन धर्मेंद्र थे इस फिल्म के हीरो, जो इस फिल्म में चाचा बनते हैं, और साथ ही रणधीर कपूर जो कि भतीजा बनते हैं। एक्टर रहमान भी है इसमें, जो धर्मेंद्र के भाई हैं और रणधीर कपूर इनका बेटा। तो ये सब मजे से रहते हैं, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब रहमान की बीवी मर जाती है और वो दूसरी शादी कर लेते हैं। जो नई बीवी आती है वो अपने साथ अपने भाई को भी ले आती है। भाई का किरदार जीवन ने प्ले किया है, और होता यूं है कि भाई और बहन मिलकर इनकी जायदाद हड़पने का प्लान करते हैं। सिंगापुर इस तरह की स्टोरी का ट्रेंड था बॉलीवुड में 80s के दौर में। खैर, इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ गाने इसमें बड़े मजेदार हैं। क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा, ये कॉमेडी गाना आपको अच्छा लगेगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था। मनमोहन देसाई साहब की फिल्मों में कुछ चीजें कॉमन होती थी, जैसे आनंद बख्शी साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, प्रयागराज और अमिताभ बच्चन। हालांकि अमिताभ इस फिल्म में नहीं थे, लेकिन देखा जाए तो 80% फिल्मों में वो थे। तो एक काम करते हैं, फिलहाल तो चाचा भतीजा के इन गानों का आनंद लीजिए आप, और मेरे आने का वेट कीजिए, एक और फिल्म का जिक्र करूंगा। भाई ये साल जो था मनमोहन देसाई साहब का साल था, कैसे लौट कर बताऊंगा। स्टे कनेक्टेड।

सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: वेलकम बैक, मेरा नाम है समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर यादों का कारवा आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। आज हमारा एक कारवा गुजर रहा है 1977 के साल से। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने मनमोहन देसाई साहब का जिक्र किया था, लेकिन वो जिक्र मैं थोड़ी देर के लिए टाल देता हूँ। अभी फिलहाल आपके अनुरोध पर मैं आपको अगली फिल्म के बारे में बता देता हूँ। आपने अनुरोध ही नहीं किया, कोई बात नहीं, मुझे तो अपना काम करना है। अगर आप अनुरोध करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं ना, मैंने कहा ना कोई बात नहीं। लेकिन आप अपनी यादों को हमसे शेयर कर रहे हैं और करते रहिए ऐसे ही। 1977 से जुड़ी कौन सी यादें हैं जो आपको अभी तक याद हैं? क्या उस दौर में आप इंडिया में थे, फिल्में देखने जाते थे, कौन कौन सी फिल्में देखी, उस समय के थिएटर्स कैसे होते थे, और आपकी जो पर्सनल जुड़ी हुई कहानियां होंगी ना इन फिल्मों से, वो भी हमें जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, यादें होती शेयर करने के लिए, भाई उन्हें यूं कब तक पुरानी किताबों के पन्नों में दबाकर अपनी टेबल की ड्रॉअर में रखेंगे। बाहर निकालिए, धूल लगी है उसे हटाइए और यादों को हमसे शेयर कीजिए। चलिए फिलहाल तो बात कर लेते हैं अगली फिल्म की। अगली फिल्म थी अनुरोध। जैसे कि मैंने कहा कि राजेश खन्ना साहब का जो स्टारडम था वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा था। आज के शो की शुरुआत में मैंने बात की उन्हीं की फिल्म की जो थी छलिया बाबू, जो उस साल बड़ी हिट हुई। अगली फिल्म अगर जिसका जिक्र किया जा सकता है, जो इस साल हिट फिल्म कही जा सकती है, वो थी अनुरोध। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था शक्ति सामंत ने, वही शक्ति सामंत जिन्होंने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाया था। भाई वो राजेश खन्ना साहब के फेवरेट डायरेक्टर भी थे, इसीलिए क्योंकि शक्ति सामंत के साथ राजेश खन्ना साहब ने जबरदस्त हिट मूवीज दी थी, जैसे आराधना, कटी पतंग, अजनबी और अमर प्रेम। ये जो फिल्म थी अनुरोध, ये एक म्यूजिकल ड्रामा थी, गाने इसके सारे ही सुपरहिट थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसका म्यूजिक दिया था, और लक्ष्मीकांत जी ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि राजेश खन्ना साहब को म्यूजिक का बड़ा सेंस है, इसलिए उनकी फिल्मों का म्यूजिक इतना अच्छा होता है। ये फिल्म 1963 में आई बंगाली फिल्म दया नेया पर बेस्ड थी। राजेश खन्ना के अलावा इसमें डिंपल कपाड़िया की छोटी बहन सिंपल कपाड़िया हैं। कॉमेडी किंग उत्पल दत्त हैं, अशोक कुमार हैं, असरानी हैं, निरूपा रॉय हैं, विनोद मेहरा भी हैं। सिंगापुर शक्ति सामंत ने फिल्म को डायरेक्ट किया है, तो स्टोरी भी अच्छी रही होगी। राजेश खन्ना इसमें बहुत बड़े पैसे वाले बाप के बेटे होते हैं, लेकिन वो सिंगर बनना चाहते हैं, जो उनके फादर नहीं चाहते कि वो ऐसा करें। इनका एक दोस्त होता है जो विनोद मेहरा बने हैं। राजेश खन्ना विनोद मेहरा के लिखे हुए गाने गाते हैं रेडियो पर, यहाँ तक तो सब ठीक रहता है। लेकिन जब राजेश खन्ना अपने पिता के साथ कोलकाता चले जाते हैं और वहाँ एक रेडियो में गाना भी गाते हैं, एंड अशोक कुमार के यहाँ ड्राइवर का काम भी करते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने अपनी पहचान छुपा रखी है। फिल्म में ऐसे तो इनका नाम अरुण है, लेकिन अशोक कुमार के सामने ये संजय कुमार है। अशोक कुमार अपनी पोती के साथ रहते हैं, सिंपल कपाड़िया बनी उनकी पोती। अब सारी स्टोरी हम उसे सुनेंगे। अरे भाई, मौका मिले तो कभी फिल्म देख लीजिएगा, सच बता रहा हूँ, फिल्म काफी मजेदार है, आपको मजा आएगा, सुपरहिट फिल्म है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि अगर इस फिल्म में सिंपल कपाड़िया की जगह खुद खन्ना साहब की बीवी डिंपल कपाड़िया होती तो फिल्म और बड़ी हिट हो जाती। खैर, अब जो बन गई सो बन गई साहब, आप तो लीजिए गानों का मजा, गाने कमाल के थे इस फिल्म के। कंप्यूटर जी बजाइए, एक से तो काम चलेगा नहीं, जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में, दो तो चला दीजिए।

0: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है? ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू
2: रात।

वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं हूँ समर। और मैंने कहा था कि यादों का कारवां में मैं जिक्र करूंगा मनमोहन देसाई साहब का। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज यादों का कारवां गुजर रहा हूँ 1977 के साल से। मनमोहन देसाई साहब की दो फिल्मों का जिक्र मैं कर चुका हूँ, दो का कर चुका हूँ, हाँ चलिए एक तीसरी का भी जिक्र कर लेता हूँ। चार फिल्में आई थी उनकी इस साल और चारों ही ब्लॉकबस्टर थी। तीसरी फिल्म जिसका मैं जिक्र करूंगा वो है धर्मवीर, और ये उस साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। पहली भी नहीं की थी अमर अकबर एंथनी। जैसा कि देसाई साहब की हर फिल्म में होता है बड़ी कास्ट, इसमें भी अजय था। धर्मेंद्र जो धर्म बनते हैं, जितेंद्र जो वीर बनते हैं, धर्मवीर प्राण है इसमें। और एक बार फिर जीवन है, रंजीत है खलनायक के रूप में, प्रदीप कुमार, इंद्राणी मुखर्जी, नीतू सिंह और जीनत अमान भी हैं। और एक बार फिर मनमोहन देसाई की कॉमन जोड़ी जो हमेशा उनकी फिल्मों में रहती है, आनंद बख्शी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ प्रयागराज, मतलब एक पूरी टीम। कादर खान ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे जिनको धर्मेंद्र और जितेंद्र और प्राण साहब ने बखूबी बोला है। फिल्म की स्टोरी बड़ी मजेदार है जिसमें दिखाया गया है कि जितेंद्र और धर्मेंद्र दोनों भाई होते हैं, लेकिन लेकिन लेकिन जिस दिन वो दोनों पैदा होते हैं, एक भाई यानी धर्मेंद्र को प्राण साहब उठाकर ले जाते हैं। अब वो क्यों उठाकर ले जाते हैं इसके पीछे भी कहानी है, लेकिन बड़े होने के बाद ये बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जीनत अमान एक बड़े स्टेट की राजकुमारी है जिससे धर्मेंद्र को प्यार हो जाता है। धर्मेंद्र साहब तलवार वगैरह लोहा बनाने का काम करते हैं। अच्छा, खास बात यह है कि धर्मेंद्र के बचपन का रोल ना इसमें उनके छोटे बेटे बॉबी देओल ने निभाया है। देखी तो आपने भी होगी फिल्म, लेकिन तब आपको ये पता नहीं था, अब पता है तब जरूर देखिएगा, मजा आएगा आपको। जो बतौर उनकी चाइल्ड आर्टिस्ट पहली फिल्म भी थी। गाने इस फिल्म के बेहद कमाल के हैं। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। और दोस्ती के गाने में धर्मेंद्र एक बार फिर सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी, बेहद कमाल की और इंटरेस्टिंग है ये फिल्म। मौका मिले तो जरूर देखेगा। देसाई साहब की है तो जबरदस्त एक्शन तो आपको देखने को मिलेगा ही। और सिंगापुर मनमोहन देसाई जी की फिल्में देखने के बाद आपको लगेगा कि उनकी फिल्मों में दो चीजें बड़ी जल्दी जल्दी हो जाती है। जैसे छोटे बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और वो बड़े हों उससे पहले वो बिछड़ भी जाते हैं, और जो बिछड़े हैं वो मिलेंगे भी तो सही, तो मूवी के लास्ट में वो मिलते भी हैं। मतलब कोई भी रिलेशन हो आगे जाकर एंड में वो मिलवा ही देते थे, तो इसी का इंतजार किया करते थे। ये एक हिट फॉर्मूला था मनमोहन देसाई साहब का जो बहुत चल भी रहा था, चला। मतलब कुल मिलाकर वो एक अच्छा सिनेमा दिखाते थे, लोगों को पैसा वसूल लगता था। ये फिल्म भी बड़ी हिट हो गई, तो चलिए फिलहाल तो हम भी पैसा वसूल कर लेते हैं, गानों का लुत्फ ले लेते हैं। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप हैं समर के साथ, यादों का कारवां सुनते हुए एंजॉय करती रहिए। मैं लौटता हूँ।

0: वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं यादों का कारवां विद समर। आज हमारा कारवां गुजर रहा है 1977 के साल से। अच्छा सिंगापुर, मुझे एक बात बताइए, क्या आपको सपने आते हैं? सपने ड्रीम्स? क्या किसी लड़की का सपना आया कभी? अरे कोई तो आपकी ड्रीम गर्ल होगी ना, तो दिन में उस सपने को सोचते सोचते कोई तो गाना गुनगुनाते होंगे आप।
1: क्या नहीं गुनगुनाते? कोई गाने नहीं है?
0: अरे क्या बात करें साहब, मेरे पास है ना, मैं सुनाता हूँ। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कमल, ड्रीम गर्ल। जी हाँ, कुछ ऐसी मदमस्त होकर धर्मेंद्र जी ने रियल लाइफ और रील लाइफ दोनों में गाया था ये गाना, और वो भी हेमा जी के लिए। अब आप पूछेंगे कि भाई ये सब कैसे? तो भाई सिंपल है, रियल लाइफ में हेमा मालिनी उनकी वाइफ है, तो शादी से पहले तो सपने उन्होंने भी देखे ही होंगे ना। एंड इस फिल्म में तो ड्रीम गर्ल है ही वो। फिल्म की कहानी में भी हेमा मालिनी अलग अलग रूपों में लोगों से मिलती हैं और उन्हें लूटती हैं। लूटती इसलिए हैं क्योंकि वो अनाथ बच्चों को पालने के लिए आश्रम चला रही होती हैं। रॉबिनहुड, लेडी रॉबिनहुड कह सकते हो ना आप। फिल्म में धर्मेंद्र हेमा मालिनी के अलावा अशोक कुमार हैं, प्रेम चोपड़ा हैं। इसमें भी एक बार फिर धर्मेंद्र के साथ आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी है। प्रमोद चक्रवर्ती इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। धर्मेंद्र एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लड़कियों से फ्लर्ट करने की उनकी आदत होती है, लेकिन जब शादी की बात आती है तो अपनी ड्रीम गर्ल से शादी करना चाहते हैं। एक बार उन्होंने एक पेंटिंग खरीदी थी, संयोग से उसी पेंटिंग वाली लड़की से उनकी मुलाकात होती है और वो उन्हें अपनी फीलिंग बताते हैं कि वो शादी करना चाहते हैं, और फिर वो बाद में लूट लेती है। एंड धर्मेंद्र कसम खाते हैं कि अब वो उसे ढूंढ कर ही रहेंगे। लेकिन वो गाना बड़ा मस्त है, ड्रीम गर्ल। अब आप ये फिल्म देखकर पता लगेगा कि धर्मेंद्र उन्हें ढूंढ पाते हैं या नहीं। ढूंढ तो पाते ही होंगे यार, ऐसा थोड़ी होता है, हिंदी फिल्मों का हीरो कभी असफल नहीं हो सकता, उस दौर में तो बिल्कुल नहीं होता था। तो वो ढूंढ लेते हैं, पूरी कहानी बड़ी मजेदार है, फिल्म देखिएगा। लेकिन फिलहाल आइए इस फिल्म से ये गाने सुन लेते हैं। रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर मैं हूं समर, लौटता हूं एक और फिल्म का जिक्र लेकर।
2: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां विद समर। वेल 1977 से आज का हमारा ये कारवां गुजर रहा है और मैं सुना रहा हूँ इसी साल की हिट सुपर हिट फिल्मों की बातें और उनके गाने। अगली फिल्म जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है परवरिश, मनमोहन देसाई साहब की इस साल की एक और बची हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म। हालांकि ये फिल्म मनमोहन देसाई जी ने इस साल सबसे पहले बनाई थी और यही वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन साहब ने देसाई साहब के साथ पहली बार काम किया था। एक बार फिर वही बड़ी कास्ट, बड़ी स्टोरी और बहुत कमाल का म्यूजिक। एक बार फिर प्रयागराज ने फिल्म लिखी, कादर खान साहब ने डायलॉग्स लिखे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, लेकिन इस फिल्म में बख्शी साहब नहीं थे, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने गाने लिखे और कमाल के गाने लिखे। अमिताभ के साथ पहली बार विनोद खन्ना, शम्मी कपूर, नीतू सिंह, शबाना आजमी और अमजद खान थे। बेहद कमाल की स्टोरी है। शम्मी कपूर साहब एक पुलिस ऑफिसर हैं और अमजद खान एक डाकू बने। शम्मी कपूर जब अमजद खान को पकड़ने जाते हैं, उसे पकड़ भी लेते हैं, तब उनकी पत्नी जो होती है, अमजद खान की पत्नी, प्रेग्नेंट होती है और एक बच्चे को जन्म देती है और मरने की हालत में होती है। लेकिन शम्मी कपूर साहब उससे वादा करते हैं कि वो उसके बच्चे का ख्याल रखेंगे और वो अपने साथ उसे ले आते हैं। इधर डाकू यानी अमजद खान को 14 साल की जेल हो जाती है। डाकू का बेटा जिसे साथ में लेकर आते हैं वो बड़ा होकर अमिताभ बच्चन बनते हैं और फिल्म में शम्मी कपूर का असली बेटा है विनोद खन्ना। लेकिन ये दोनों कैरेक्टर में डिफरेंट होते हैं, यानी अमिताभ तो एक ईमानदार इंसान बनते हैं और विनोद खन्ना नेगेटिव कैरेक्टर वाले। खैर, 14 साल की जेल के बाद जब अमजद खान बाहर आते हैं तो वो शम्मी कपूर के पास जाते हैं अपना बेटा लेने के लिए। जब विनोद खन्ना को इस बात का पता चलता है तो वो सोचता है कि वही डाकू का बेटा है, जबकि वो सच नहीं होता है। खैर, यही कंफ्यूजन इस फिल्म की स्टोरी है। एक बार फिर देसाई साहब की रिलेशन वाली स्टोरी है, लेकिन दोस्तों डायलॉग्स इसके बड़े मजेदार हैं। जब शम्मी कपूर एक बार दोनों बेटों से पूछते हैं कि तुम शादी कैसे करोगे, लव मैरिज या हमारी पसंद से, तो दोनों बोलते हैं हमें लव नहीं पता तो मैरिज कहां से करेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन टाइम का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। आप भी सोच रहे होंगे कि परवरिश देख कर आया ये लड़का अभी के अभी। हाँ, देखी थी मैंने, लेकिन अभी नहीं, काफी टाइम पहले। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आपकी याद में रह जाती हैं, इसीलिए तो यादों का कारवां हम लेकर आए उन यादों से बाहर निकालने के लिए चीजों को। तो अगर आप भी अपनी यादें हमसे शेयर करना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर जरूर कीजिए। फिलहाल हम प्रेमी प्रेम करना जाने और जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना, ये गाने तो बनते हैं बड़े ही मजेदार गाने। परवरिश से रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आ रहे हैं आपके लिए। स्टे कनेक्टेड।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी?
1: Order today from GG Mart, your personal grocer. वेलकम बैक आप सभी का, मेरा नाम है समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव के जरिए आपसे मुखातिब हूँ लेकर यादों का कारवां। आज हमारा कारवां गुजरा 1977 के साल से, गुजरा इसलिए कह रहा हूँ कि बस अब वक्त हो चला है मेरे जाने का, लेकिन ये हमारी आखिरी मुलाकात जरूर है, लेकिन आखिरी फिल्म का जिक्र तो मैंने किया ही नहीं, मुलाकात कैसे पूरी होगी? तो आखिरी फिल्म जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा जो 1977 में आई थी, वो है दूसरा आदमी। और ये फिल्म द ग्रेट डायरेक्टर प्रोड्यूसर यश चोपड़ा साहब ने प्रोड्यूस की और रमेश तलवार साहब ने इसे डायरेक्ट किया था। शशि कपूर के साथ राखी, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, देवेन वर्मा और परीक्षित साहनी इस फिल्म में थे। स्टोरी फिल्म की अच्छी है, लेकिन म्यूजिक इसका सबसे ज्यादा अच्छा है। किशोर

मजरूह साहब के बोल है भाई, यश जी की फिल्म थी तो म्यूजिक तो अच्छा होना ही था। और कहते भी हैं कि यश जी को म्यूजिक का बड़ा कमाल का सेंस था। उन्हें पता था कि कैसा म्यूजिक हिट होगा और कौन सा गाना कितना चलेगा। फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसी है, शशि कपूर और राखी एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। राखी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती है, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड यानी शशि कपूर की मौत के बाद वो सदमे में चली जाती है और अकेला रहना पसंद करती है। कुछ सालों के बाद ऋषि कपूर उन्हें अपनी कंपनी में काम देते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। इसी दरमियान उन्हें पता चलता है कि ऋषि कपूर और नीतू सिंह एक दूसरे को पसंद करते हैं। इन दोनों को देखकर राखी को शशि कपूर की याद आती है। अच्छा, फिल्म में एक सीन है जिसमें ऋषि कपूर और राखी एक फिल्म देख रहे होते हैं। वो फिल्म पता है कौन सी है? 1973 में आई फिल्म, अमेरिकन फिल्म 40 कैरेट्स। और एक और चीज आपको बता दूं इस फिल्म की कि शशि कपूर रियल लाइफ में ऋषि कपूर के चाचा लगते थे। वो कहा है कि अभी तो हमारे जाने का वक्त हो गया है, लौटेंगे एक और शो के साथ, तब तक हमका जाने की इजाजत दे दीजिए। अरे तनिक सी तो देर की बात है, फिर आकर मिल लेंगे। हाँ? अरे हमारा नाम तो समर है, बहुत जल्द मिलेंगे, हमने कहा ना आपसे। लेकिन जाते जाते हमारे कुछ वादों को जरा गौर से सुन लीजिए और उन्हें पूरा कीजिएगा आप। हाँ, कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद रखें। याद मुझे भी रखिएगा। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर। यह है रेडियो 24/7 लाइव। अभी के लिए दीजिए इजाजत, बाय, नमस्कार, टेक केयर।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

0: ना पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो। जो तू मेरी रानी।

हाजिर है हुस्न इश्क की महफिल में आज फिर हाजिर है।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
1: जोश में रहो।
2: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the devotional hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti, subah 6 baje se.
3: रात अकेली है
0: तो क्या, हम तो आप

0: जादू है नशा है
1: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
2: रात।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: तू
2: हम जात हैं, अगर हमारे पीछा कैला पहाड़ से कूद के हम अपन जान दे रहे।

चाची पाखी जुमे रात आई है, जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकला चीपा की जुमे रात आई है, जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकला चीपा की जुमे रात आई है, जेड़ा अज भी ना नचे ओदी।

रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।

0: मोहब्बत क्या है?
1: मोहब्बत, मोहब्बत जिंदगी है।
2: मोहब्बत क्या है, क्यों है, कहाँ है?
1: मेरा विश्वास है कि भगवान ने सारे दिल के रिश्ते पहले से ही जोड़ दिए हैं, बस उनका मिलना हम पे छोड़ दिया है। उसने हम सबको जोड़ियों में बनाया है और हर एक के लिए कोई एक जीवन साथी है।
2: जीवन साथी, क्या बकवास है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता।
1: मुझे तो पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे लिए बनाया गया है और कभी ना कभी मैं उससे जरूर मिलूंगी।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन मुझे कोई बताएगा प्लीज कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे लिए कौन बनाया गया? मेरा मतलब, क्या वो मेरे नाम का बोर्ड लेकर घूम रही होगी?
3: बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।

उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

अपनी पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: You know what? कुछ होते हैं डेलिकेट, फिर उसके बाद आते हैं सुपर डेलिकेट लोग, और फिर आते हैं मेरे जैसे लोग जिन्हें हल्का सा कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है ना तो वो बीमार पड़ जाते हैं। हाय हाय, आप मुझे डेलिकेट मत बोलो, आप मुझे छुई मुई बोल सकते हो। सो हेलो, हाय, मैं आज ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। और आपको पता है मैं छुई मुई क्यों हूँ? बिकॉज कल रात को मैंने आइसक्रीम खा ली, और मैं हल्की सी भी आइसक्रीम खा लेती हूँ ना तो मुझे आ जाता है सर्दी, जुकाम, गले में पेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जो लोग कहते हैं ना कि लड़कियां बहुत डेलिकेट होती हैं, तो उनको मेरा यानी आरजे नुपुर का एग्जांपल दे देना कि हाँ हाँ, हम जानते हैं एक लड़की को जो बहुत डेलिकेट है, अपना ध्यान नहीं रखती है। चलिए, बातों ही बातों में आपका ध्यान रखने के लिए आपके लिए एंटरटेनमेंट ढूंढ कर ले आई हूँ। सो डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
4: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: कई बार ऐसा कह दिया जाता है कि लड़के अपनी सैलरी और लड़कियां अपनी एज किसी से शेयर नहीं करती, लेकिन घूम फिर के मुद्दा यहीं क्यों अटका रहता है? मतलब सबके पास एक ही टॉपिक क्यों है? जीवन में कुछ करना है, आपको कुछ बड़ा इंसान बनना है तो बड़ी बड़ी बातें करो ना। मतलब वही पुरानी घिसी पिटी कैसेट लगाने से फायदा क्या है? सो हेलो हाई, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अच्छा, ये जो एज वाली कैसेट है ना, ये अभी पता है कहाँ पे लगी है? तबू के आसपास, राइट? तबू जो आप बड़ी सारी फिल्मों में, स्पेशली रिसेंटली उनका भूल भुलैया मूवी का जो पार्ट आया था उसमें भी आपको वो नजर आई। सो तब्बू जो है ना, वो अपनी फिल्मों को लेकर बहुत ज्यादा चूजी है, एक्सट्रीम चूजी है। लेकिन उनका कहना ये है कि जब भी फिल्म डिस्कशंस पे हम बैठते हैं तो लड़कियों की उम्र देखकर उन्हें रोल दिए जाते हैं, जबकि लड़कों के संग ऐसा क्यों नहीं किया जाता? हाँ, तो बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो आज भी डायरेक्टर्स को यही बोल बोल के कोसती है कि पता नहीं क्यों इन्हें हमारी उम्र से क्या फर्क पड़ रहा है, जबकि हम इतना वेल मेंटेन्ड हैं, हम इतनी गुड लुकिंग हैं, हम इतनी एज फ्रेंडली नजर आ रहे हैं, फिर भी लड़कों पर दांव ज्यादा खेला जाता है, लड़कियों पर कम। हाँ जी, रुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्र लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: To Shahi Maharani for the special treat.
3: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
4: Thank you Shahi Maharani for comforting and mouth-watering flavors.
3: Thank you.
5: Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you. We love you.
6: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Singapore. Celebrate with 6 Shahi Signature wet and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235 8840. Terms and conditions apply.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। चलो जी, ये जो है ना, ये आपको लग रहा होगा कि चलते फिरते रणबीर कपूर ने फैसला ले लिया, लेकिन मुझे यानी आपकी आरजे नुपुर को पता है ये मूवी प्रमोशन का अलग ही लेवल है। सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड डेफिनेटली आजकल मूवीज को प्रमोट करने के लिए सिर्फ ट्रेलर बनाना नहीं पड़ता, बल्कि सोशल मीडिया पे भी इनोवेटिव तरीके से प्रमोट करना पड़ता है। इवन ऑन ग्राउंड जाकर बहुत सारे इवेंट्स में हिस्सा लेना पड़ता है, तब जाकर आपकी मूवी जो है वो 360 डिग्री पे पूरी दुनिया को दिखाई दे पाती है। आप ये जो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि बस मूवी बनी, थिएटर्स में रिलीज हुई और लोग देखने चले जाएंगे, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सो हेलो हाय, मैं आज अनुपम मस्ती मॉर्निंग शुप्रा को बताना चाहेगी कि अब एक्टर्स और डायरेक्टर्स जो है ना, वो करोड़ों का खर्चा सिर्फ मूवीज बनाने में नहीं करते, बल्कि कुछ करोड़ जो है ना वो मार्केटिंग करने में भी लगा देते हैं। राइट, रिसेंटली आपको पता है रणबीर कपूर एंड साई पल्लवी स्टारर रामायण मूवी आने को है। ओके, सो अयोध्या, रामायण, सीता जी, राम जी, एकदम डेलिकेट पार्ट जो होता है ना स्क्रिप्ट का, वो सारा इन्हीं शब्दों के अराउंड रोटेट हो रहा है। लेकिन आपको पता है रिसेंटली रणबीर कपूर ने 75 एकड़ ऑफ लैंड अयोध्या में परचेज कर लिया है। हाँ, 3.31 करोड़ का। अब आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो भैया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ये फिल्म को प्रमोशन देने का एक तरीका है कि रणबीर कपूर अयोध्या की धरती से इतना जुड़ गए हैं, इस रोल से इतना ज्यादा जुड़ चुके हैं कि उन्होंने अयोध्या में करोड़ों की जमीन खरीद डाली। खैर, इन चीजों का रिविलेशन तो बाद में होगा, फिलहाल मैं आज मस्ती मॉर्निंग शो पर कुछ और भी बातें बताने वाली है। सो डोंट गो एनीवेयर।

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा kg मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
2: क्या जी?
3: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
2: वाजी, क्या बात जी।
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning! कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
5: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
6: 8 की तारीख में अगर आप जाकर ये गूगल करेंगे हु इज द नेशनल जीजू ऑफ इंडिया, तो नाम निकल कर आएगा किसका? हाँ बिल्कुल, निक जोनस का निकल कर आएगा। एंड निक जोनस जो है ना, वो प्रियंका को इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट देते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब कई बार प्रियंका चोपड़ा के डायलॉग्स, उनकी मिमिक्री वो इतनी अच्छी तरीके से अपने प्लेटफॉर्म पे कर देते हैं कि मजा ही आ जाता है। सो मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ बनी हुई है। एंड ये जो मजेदार निक जोनस के किस्से हैं, ये प्रियंका चोपड़ा और निक को एक साथ वर्क करने का मौका भी दे रहे हैं। मतलब एज ए डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स या शो मेकर्स तो ये लोग काम करते ही हैं, बैकएंड में एक दूसरे का सपोर्ट रखते ही हैं, लेकिन अब पब्लिक की डिमांड आ रही है कि ये दोनों एक साथ एक ही मूवी में नजर आए। तो प्रियंका ने बोल दिया है कि डेफिनेटली ऐसा होने वाला है। अब वो मूवी हिंदी होगी या इंग्लिश होगी वो पता नहीं, लेकिन ये कोलैबोरेशन तो बनता है बॉस। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.